मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि तदनुसार 4 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ईश्वर की देन है भारत, वेद कहे स्वर्ग समान, सुंदरता क्या कहनी इसकी, अनेकता में एकता ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। परमपिता जो एक सर्वव्यापी शक्ति है, जो संसार के कल्याण के लिए विद्यमान है, जो एक आत्मा और अदृश्य सम्राट के रूप में देखता है,

0: ये थी आज की वंदना। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 14.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। आलेख और स्वर है शिवसागर त्रिपाठी का।
1: ये दोनों मना स्थितियां नकार पर्यायी हैं। इनमें न जीवन है, न ऊर्जा और न विकास, न प्रगति। जीवन की परिभाषा वर्तमान है, इसी पर मानव का अधिकार हो सकता है। भूत और भविष्य दोनों अधिकार सीमा से बाहर हैं। एक में यादें हैं तो दूसरी में कल्पना। इन दोनों के मध्य जीना ही दुर्भाग्य का कारण है। ये दोनों मना परिस्थितियां मानव को इस संसार तथा स्वर्ग से अलग थलग किए रहती हैं। दोनों मानव को भाव मूर्छा में ले जाती हैं। एक तत्वदर्शी ने कहा है, अतीत की यादें और भविष्य के सपने ईश्वर और मानव के बीच पर्दा डाल देते हैं। इस भाव मूर्छा में मन अतीत के भीषण भंवर में से निकल नहीं पाता, साथ ही अपने अरमानों और सपनों के ताने बाने में मात्र ख्याली पुलाव ही पकाता रहता है, जो अकर्मण्यता को जन्म देती है। ऐसे व्यक्ति के सपने उषा काल की ओस के समान होते हैं, जो रोशनी के साथ गायब हो जाते हैं। यद्यपि सपने देखना प्रगति का आधार है, पर निष्क्रिय निस्तेज और आलसी बन स्वप्न देखना मानव को दिवास्वप्नी बना देते हैं। कोरी कल्पनाओं में जीवन पलायनवाद है। पलायनवाद का अर्थ है वर्तमान में खड़े हो सकने का अभाव। यदि परम सत्ता ने मानव को जीवन दिया है तो उसको प्रसन्न, आनंदमय और विकासशील बनाने के लिए मानव को दो अनुदान भी दिया है। प्रथम है समय और दूसरा है क्षमता। इन दोनों की विशेषता है सीमितता। क्योंकि दोनों सीमित हैं, इसलिए इनके उपयोग में लापरवाही बरतना अशुभ परिणाम देती है। जीवन का अर्थ ही है वर्तमान, जिसमें समय क्षमता का सदुपयोग ही सफल प्रसन्न जीवन है। विकास, प्रकाश, प्रगति, सफलता इनके सदुपयोग का ही मीठा फल है। जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है। याद रखना है कि कोई भी क्षण वापस नहीं आता। यदि उसका सदुपयोग न किया गया तो वो क्षण कभी भी वापस नहीं आएगा। हमारी श्वासें भी वर्तमान में हैं। श्वासों का सदुपयोग ही जीवन का लक्ष्य है। कुछ करने की क्षमता वर्तमान में ही है। आज का कर्म ही कल का भाग्य बन जाता है। सामान्यतः मानव अपनी यादों, सपनों व इच्छाओं में ही ज़्यादा जीता है और वर्तमान की अवहेलना करता रहता है। मानव के दुर्भाग्य का कारण यही है। अतीत के परिष्करण से वर्तमान की क्षमता उभरती है और वर्तमान की क्षमता को समय के साथ नियोजित करने पर सुनहरा भविष्य भाग्यशाली बन जाता है। वर्तमान होशपूर्ण जीवन ही जीवन की परिभाषा है। वर्तमान सुखद कम और दुखद अधिक है। कर्म की प्रधानता का समय वर्तमान ही है। वर्तमान समय बलिदान मांगता है, जो नाना प्रकार की नकारात्मकताओं से भरा रहता है। परिश्रम, मध्यवसाय, विवेक की मांग वर्तमान की मांग है, पर इन नकारात्माओं के बीच खड़ा रहना कठिन होता है। जो संघर्षों के बीच खड़ा होने में सक्षम है, वही सफल मानव है। महात्मा बुद्ध के शब्दों में, जिस दिन मैं ठहर गया उसी दिन मैं बुद्ध हो गया। सारा का सारा माया जाल अतीत और भविष्य से ही आता है। जो वर्तमान में जितना ज़्यादा टिकता है, वो संसार, जीवन और अध्यात्म में उतना सफल होता है। भाग्य और दुर्भाग्य का कारण हम स्वयं हैं। वर्तमान का सदुपयोग ही भाग्य है और दुरुपयोग ही दुर्भाग्य है। मानव अविदित क्षमताओं का पुंज है। अपनी अतिचेतन की परतों का दृढ़ संकल्प, अध्यवसाय तथा धैर्य के बल पर मानव भाग्य बन सकता है। किसी कवि की चेतना सुनिए, हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है, खुद का लिखा न खुद पढ़ पाता, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियत को मत मानो, अपने हस्ताक्षर पहचानो। हम जो करते कर्म यहाँ, फल पीछे पीछे आता है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर था शिव सागर त्रिपाठी का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर है पीडी जसराज और साथियों का। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचरित मानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध राम कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नौती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर था पीडी जसराज और साथियों का। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: गांवकारी किसान भाई मन जड़ी बूटी ले बना लुती ये कीटनाशक दवाई हो से जेके जैविक कीटनाशी बले बल्स होतो। असन कीटनाशी जड़ी बूटी मन बल्लो ने जसन की लीम होली उसनी ची सीन कोना बलुआत असन जोन जोन जड़ी बूटी बल्लो ने ये बूठा मन ले बना लुती दवाई आए तो पनाए बोल सांगले की एक जैविक कीटनाशी बसोत। असन जैविक कीटनाशी के आमी आप लोग फसल ने रोग राई मन के गुच्छा तो काम नहीं आनलो ने ये चोले काय हो सी आमचो देह हाथ पाए बोले उन फसल के खाद लो नी ना से और आमचो जमीन बोले अच्छा ले अच्छा रहे से। तो गांवकारी किसान भाई मन असनीची गोटक ये खोजला से कि लीम ले बोले आमी कहे किसम चो रोग रही मन के गुच्छा के लाई सकू तो नीम बले गोटोक जैविक कीटनाशी भीतरे वैसे और ये लीम चो जोन बूटा हो से ये तक कहे किसम चो रोग गुच्छा तो जीनिस रहे से जेके बल सोत लेमोनाइट और गुसनीच गोटोक एजोडिरेक्टिन सेलानिन और मिलीफंटोल बिम्बिन बलुआत ये जीनिस मन रहे से जोन कीड़ा कीड़ी मन के मार तो काम ने खूबे फायदा करे से। तो दादा दीदी मन तो असन लीम ले आमी दूसर फसल मन के बचाक लाई सकू और साग भाजी मन के बले बचाक लाई सकू। तो ए चोका जे लीम चो पाना के बले आमी काम ने अनुभती जोन धान फसल हो और दूसर फसल के बले आमी अच्छा ले अच्छा संगाक लाई सकू। असन लीम पाना के काम ने आंतर होलो ने सबले पहल पाना के टूटान भती छाए लगे खिंडिक सुखाऊ देत रहा और उन चो पाछे धान संगातर हो नाल पर दूसर दूसर जोन अरन बीती फसल मन हो से उन फसल मन के संगा तो काजे गोरला नहाले जोन ढाबा बलसोत उता खाले ओछा उन देत रहा और उन चो पाछे 6 ले 10 इंच धान के रखा उन भाती समान बना देत रहा। फिर असन 6 ले 10 इंच रखा लो पाछे फिर नीम पाना के ओछा उन देत रहा उन चो पाछे 6 फिर 6 ले 10 इंच मोटा उता धान के रखाऊ देत रहा असन रकालो पाचे असनी ची करून करून धान के भरते जात रहा और सपाय धान सरली बल्लो ने उन चोपाचे फेर ऊपरे लीम पाना के ओछाऊ देत रहा। तो असन करून भाती हमें धान नहाले दूसर फसल के बले खूबे दिन तक अच्छा ले अच्छा रोग संगाक लाई सकू और उतर कीड़ा कीड़ी और सूरी और कई किस्म से नुकसान कर तो कीड़ी मन उतर नहीं धरे। तो दादा दीदी मन ये तो होली नीम पाना चो गोट मंतर अमी लीम चो फरले बले कहे किसम चो रोग रही मन के गुचाक लाई सकू। तो भाई बहन मन खोजाकारी भाई मन सांगला से कि असन पाकलो बीती लीम फर के आम के जुहा तो राय और उन चो पाछे उनके अच्छा ले अच्छा संगान भाती उन चो पाउडर बनात रहा है मंत्र गोटोक गोट के ले कर तो रहा है कि लीम पाना जो लीम फर हो से उनके अच्छा ले पाकुक दे तो रहा है और नी पाकू पाकू बोले उनके टूटा तो नए और पाकलो भी तीक उन मन टूटा सकले तो खूबे अच्छा रहे दे मंत्र उन मन टूटा तो बोल तो लीम पाना के मुश्किल हो से उन्हीं हिसाब ने आम के कहा है कि अच्छा पड़ुक दे तो रहा है और शुक्लो बीती लीम पाना मन के हाथे बेच तो रहा है और बेच तो बेरा ये गोट के बल ले कर तो रहा है कि उनके बाड़ेन ने नी ओंडे आता रहा है बाड़ेन ने ओंडे आलो ने कहा है उन दो वही वक्त जो काम निखिंडिक अच्छा काम नहीं करे से।

0: तो हुनिका जे पाकलो बीती लीम पाना के अच्छा ले बेचत रहे और खिंडी के हुनके सुखा देत रहे और सुखा तो बराबर आम के असन ठाने नी सुखात रहे जोनता ने सिर मिठ होली नहाल फिर लोहा बीती ठान होली असन ठान ने लीम पाना के नी सुखात रहे असन सुखालो ने काय हो से उन मनचो जन दवाई वकत ने काम ये तो बीती जोन जीनिस मन आए हुन मन न सुन जाए से और हुन बीती जोन जीनिस मन नसलो ने कहा कि दवाई वकत काम ने नी ऐसे तो ए गोट के लेख करुन भाती जो लीम चोपरा है अच्छा ले उनके सुखा तो रहा है और उनचो पाचे सुखली बल्लो ने उनके लगड़ुन भाती उनचो सोला के गुचाऊ देत रहा है असन सोला के गुचालो पाचे हुन पाउडर बने से और असन पाउडर बना लो बीती की बोले अच्छा ले उन तीन महीना चो भीतरे उनके तेल बल चेपा सकोत और तेल नी चेपालो ने आम के उनके दवाई ची बल काम ने आंतो रहा है बल्लो उनके खिंडी पीसून देत रहा है और पीसलो बीती की आमी कहे किसम चो दवाई बना तो काम ने आनुकलाय सकू असनी ची पीसलो बीती लीम बीच के साग भाजी चो पला पका तो ठान ने बले देउन भरी आम कहे किसम चो कीड़ा कीड़ी मन के गुचा उकलाय सकू
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की पेड़ा खड़ा चुगोट मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में लीजिए सुनिए परदेसी माता पाड़। वादक कलाकार हैं भारत और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे परदेसी माता पाड़, वादा कलाकार थे भारत और साथी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षेप जानकारी। दोपहर 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम, शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स, रात्रि 10 बजे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, आकर्षण होंगे नाटक नन्ही कली, लेखक होंगे तिलक चंद देवांगन, निर्देशक होंगे शाहिद हुसैन, साथी होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर सुनिएगा विभिन्न बोलियों में लोकगीत कार्यक्रम होगा लोकमंजरी। सुबह 9 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सुबह 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे क्या कहना फिल्म के गीत। गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10 बजे सुनिएगा शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। कलावती और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। कार्यक्रम होगा गुड़दुम। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता का प्रसारण समय होगा सुबह 11:30। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे पाटाविनार कार्यक्रम में जयती नाग और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट। दोपहर 1:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम कला और कलाकार। शाम 5:05 पर समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। युवाणी का प्रसारण समय शाम 5:10। मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे होगा कार्यक्रम बस्तर के स्वर। शाम 7:21 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। डांडामाली कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कोया और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम पिला मनकाजी गोट हल्बी बोली में प्रस्तुति होगी पूर्णिमा सरोज की। ग्राम पंचायत की विकास गाथा कार्यक्रम का प्रसारण समय रात्रि 9:15। इसमें सुनिए बलबीर सिंह कच्छ की वार्ता, विषय होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रैनी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे महंगूराम और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत। दोपहर 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम, शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स, रात्रि 10 बजे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, आज के आकर्षण होंगे तिलक चंद देवांगन द्वारा लिखित नाटक नन्ही कली, निर्देशक होंगे शाहिद हुसैन, साथी होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार क्रमशः संस्कृत और हिंदी में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिझा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इन्धनमूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इन्धनस्य अर्थात् एटीएफ मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आयव्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लाख आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लाख ट्रकयानानि 16,000 बसयानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादीपर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजनापि अनुमोदिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला सम्बद्धानाम् अशेषेषु पक्षेषु मन्थनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनं नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणाम् अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्ने हि विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सः आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्रीशाहः पुष्पवन्त पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरास्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिणदिल्ल्यारक्षिविभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमनविभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः 40+ जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शीबा सिंह का स्नेहिल अभिवादन। आज नमस्कार जगदलपुर के कार्यक्रमों में तिलक चंद देवांगन के द्वारा लिखित नाटक नन्ही कली, साथ ही फिल्मी गीतों की मधुरिमा।

श्रोताओं, शिशु या कहें कि बच्चे, जो कि ईश्वर का अनमोल वरदान है, अनुपम कृति कहा गया है। बच्चे निष्पाप होते हैं, हमारे दिए गए संस्कारों जो संस्कार हम उन्हें देते हैं या प्रदान करते हैं, संस्कारों तथा प्रदान किए गए परिवेश के बीच वो बड़ा होता है। शिशु की निर्मल मुस्कान सारे परिवार को प्रसन्न रखती है। श्रोताओं, यदि हम कहें सही अर्थों में देखा जाए तो बच्चों को हम नहीं खिलाते अपितु बच्चे हमें खिलाते हैं, सही है ना?

सचमुच श्रोताओं, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के तारे। श्रोताओं, आज है 4 जून और आज के इस दिन को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा। हर साल 4 जून को ये दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनमें जागरूकता फैलाना। इसका जो इतिहास है वो ये है श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 अगस्त 1982 को ये दिन मनाने की घोषणा की गई थी। पृष्ठभूमि यदि हम देखें तो इसकी शुरुआत 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों के शिकार होने पर उत्पन्न आक्रोश के कारण हुई थी। इसका जो उद्देश्य है, बाद में इसका दायरा बढ़कर युद्ध के शिकार बच्चों के साथ साथ दुनिया भर में किसी भी प्रकार की हिंसा, जैसे कि शारीरिक, मानसिक या भावात्मक हिंसा जो बच्चे झेल रहे हैं, सभी बच्चों को शामिल कर लिया गया। युद्ध और संघर्ष के क्षेत्रों में बच्चे केवल दर्शक नहीं बल्कि सीधे तौर पर इसके शिकार होते हैं। युद्ध में बच्चों की भर्ती, हत्या, यौन हिंसा, अपहरण और स्कूलों, अस्पतालों पर हमले सबसे सामान्य उल्लंघन है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार संघर्षों में बच्चों के खिलाफ हिंसा और हताहत होने की दर बेहद चिंताजनक है।

0: आक्रामकता के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जी हाँ श्रोताओं, जिसमें हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम किस प्रकार से हिंसाग्रस्त बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
3: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
1: या फोन करें 222150 या 222400,
2: 222150 या 222400।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
5: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
6: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
5: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
7: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
8: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
9: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
10: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, कार्यक्रम के क्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं नाटक नन्ही कली। लेखक हैं तिलक चंद देवांगन और निर्देशक हैं शाहिद हुसैन।

0: मधु।
1: क्या है?
0: टाई नहीं मिल रही।
1: कौन सी टाई?
0: वही काली वाली।
1: ठीक से देखो, वही अलमारी में तो रखी थी मैंने।
0: ओहो, जूते भी कहीं नजर नहीं आ रहे।
1: जरा ठहरो, अभी आई। हाँ, अब कहो क्या क्या चाहिए?
0: टाई और जूते।
1: पर मनीष, टाई और जूते अपनी जगह फिट हो चुके हैं।
0: मधु, मैंने ये माना कि जूते फिट हो चुके हैं, पर हुजूर, जरा हमारी इस टाई की ओर तो देखिए, ये कमबख्त हमसे बनता ही नहीं।
1: तो फरमाइए।
0: अजी, फरमाना कैसा, बस तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से ये टाई कस दो तो बड़ी मेहरबानी होगी।
1: अच्छा, तो ये बात है, मुझे बेवकूफ समझते हो?
0: क्या मतलब?
1: वाह साहब, तुम्हारे भोलेपन का तो जवाब नहीं, सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हो।
0: पर मधु,
1: मैंने कहा ना, मुझे स्पर्श मत करना।
0: लेकिन मधु,
1: आज मेरा व्रत है बाबा।
0: ओफो, व्रत ना हुई जैसे सौतन हो गई।
1: और हाँ, करवा चौथ का व्रत रखा है मैंने, आज ऑफिस से जरा जल्दी घर लौटाना।
0: हाँ भाई, मैं तुम्हें नाराज थोड़े ही कर सकता हूँ।
1: वैसे मनीष,
0: हाँ कहो।
1: तुम्हारी अदा का जवाब नहीं मनीष।
0: कौन सी टाई वाली?
1: हाँ, उस पर ही तो मर मिटी थी मैं।
0: फिलहाल अटैची मिल सकती है?
1: ओह, मैं भी कहाँ खोने लगी, ये लो अटैची। और हाँ, जरा जल्दी आना।
0: हाँ, जल्दी ही आऊंगा।
1: आधी रात होने को आई और मनीष अभी तक घर नहीं पहुंचा, जाने कहां रह गया।
0: मधु, मधु,
1: आ गए तुम?
0: हाँ मधु, पर माफ करना, देर हो गई। दरअसल क्या था ना, कंपनी के बिजनेस में जरा फंस गया था।
1: मैंने कारण पूछा क्या?
0: नहीं, पर कमरे में धूमिल रोशनी।
1: कुछ देर पहले बिजली गुल हो गई।
0: और ये दिया? ये दिया भी बुझने लगा है। मैं जरा इसमें तेल डाल देता हूँ।
1: वो क्या है मनीष, कि बेचारा दिया बड़ी देर से अपने परवाने के इंतजार में जल रहा है। परवाना तो आने से रहा, पर दिया जल जल कर बुझने को आ गया।
0: पर मधु, तुम भी तो अभी तक मेरे इंतजार में इस दिए के संग संग जलसी रही हो। दिन भर भूखी प्यासी, आधी रात होने को आई, पर तुमने जल तक ग्रहण नहीं किया।
1: करवा चौथ का व्रत ऐसा ही होता है। इस दिन पत्नी निराहार व्रत रखकर अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है, पर इसमें भी नारी को अपार सुख और संतोष की प्राप्ति होती है।
0: धन है भारतीय नारी।
1: मनीष, तुम तो भारतीय नारी का गुणगान करने लग गए।
0: ओहो, तुम्हारा व्रत जो तोड़ना है, चलो जल्दी करो।
1: आहिस्ता बाबा।
0: तुम्हारे धैर्य की तो सीमा नहीं मधु, बहुत खूब।

0: दर्जन अनार दाना, दो पैकेट मोमबत्ती, कुछ पटाखे भी, मिठाई मिठाई तो आएगी ही, और हाँ फुलझड़ियाँ, और अरे अरे ये क्या, किस सोच में डूबे हो?
1: कुछ भी तो नहीं।
0: कुछ तो जरूर है मनीष, तुम ना सही, तुम्हारे चेहरे की मायूसी कह रही है।
1: बात कोई नई नहीं है मधु, तुम भी तो बखूबी जानती हो।
0: मनीष,
1: पता नहीं मधु, मैं कभी कभी भावुक क्यों हो जाता हूं। जाने क्यों लगता है मुझे ऐसा कि इस घर के सूने कमरे, इस घर का सूना आंगन किसी मासूम बच्चे की किलकारियों से गूंजना चाहिए।
0: ओह, तो ये बात है।
1: हमारी शादी के काफी वर्ष गुजर चुके हैं।
0: जब से डॉक्टरों ने मुझ में ऐब पाया है, मैंने तुमसे कई बार कहा है मनीष कि तुम दूजा ब्याह कर लो, मैं उसकी चाकरी कर लूंगी, हर कष्ट सह लूंगी, पर तुमसे तुम्हारा बाप बनने का हक नहीं छीनूंगी। पर तुम मानते ही नहीं मनीष, तुम मानते ही नहीं।
1: और तुम्हारी ये बात मान भी नहीं सकता मधु। तुम क्या समझती हो, मुझे तुम्हारे भावनाओं का एहसास नहीं? एक औरत के दिल की सबसे बड़ी मुराद मां बनने की होती है। दुनिया की हर औरत मां बनकर अपनी जिंदगी पूर्ण समझती है। मधु, मुझे बाप न बन पाने का जितना गम और दुख है, उससे कहीं ज्यादा तुम गमगीन और दुखी हो मधु। फिर भी तुम यह चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से दरकिनार कर दूं?
0: मैंने ऐसा कब कहा?
1: पर तुम्हारा कहा मान लेने पर ऐसा ही तो होगा। मैं कभी तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर नहीं करूंगा मधु, कभी नहीं।
0: तुम्हारा हृदय कितना विशाल है मनीष,

0: आओ मनोज आओ। अरे मधु सुनती हो?
1: जी अभी आई।
0: मधु ये है मनोज मेरा बचपन का दोस्त, और मनोज ये है मेरी पत्नी मधु।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते भाभी।
0: मधु एक काम करो, तुम मनोज के लिए कुछ नाश्ता वगैरह ले आओ।
1: जी अच्छा।
0: और मनोज सुनाओ क्या कर रहे हो आजकल?
2: बस यार नौकरी तो मिलने से रही, मेरा रेडीमेड का व्यवसाय है, भगवान की दुआ से अच्छी खासी चल रही है।
0: और शादी वगैरह?
2: हाँ मनीष कर ली है, दो बच्चे भी हैं।
0: अच्छा बच्चे भी हैं?
2: हाँ, पर यार तेरी ठाट वाट देखकर तो मैं दंग रह गया हूँ। गाड़ी बंगला अच्छी खासी कंपनी की नौकरी और परी सी सुंदर बीवी भी।
0: क्यों नजर लगाने का इरादा है क्या?
2: नजरें तो हमारी किसी को लग चुकी हैं यार, अब क्या लगेंगी।
0: पर मनोज तेरी आंखें यार।
2: हाँ मनीष तुम ठीक कह रहे थे, मेरी आंखें कुछ ढूंढ रही हैं।
0: लेकिन मनोज
2: हैरानगी की कोई बात नहीं मनीष, सुना है तुम्हारी इस शादी को काफी वक्त हो गया पर इस घर में कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है क्या?
0: हाँ यार तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, आज तक मधु की गोद हरी नहीं हुई है।
2: मनीष ऐब तुम में है या भाभी में?
0: अब मैं क्या कहूं, डॉक्टर मधु की ओर इशारा करते हैं।
2: तुमको यकीन नहीं होगा?
0: मेरे यकीन करने से क्या होगा यार?
2: होगा मनीष होगा।
0: क्या?
2: अब बच्चा होगा तेरे घर में, पर मधु का नहीं किसी और का।
0: किसी और का? क्या मतलब?
2: देखो मनीष खिजा के फूल पर कभी बहारे नहीं आती, एक बार तुम्हें यह यकीन हो जाए कि मधु एक खिजा की फूल के सिवा कुछ भी नहीं तो तुम्हारे दिल में मधु के लिए जगह कम हो जाएगी और तुम अपने आप किसी दूसरे फूल की ओर खींचे चले जाओगे और तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी।
0: मनोज मनोज मधु मेरे लिए मात्र बच्चा पैदा करने की कोई मशीन नहीं है यार, मधु मेरे लिए जीती जागती एक इंसान है।
2: मनीष भावुकता में बहना अकलमंदी नहीं, जो पेड़ फल ही ना दे भला उसका पालन पोषण कैसा।
0: मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं मनोज, जानते हो मधु मेरी लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का उपवास रखती है, और तुम कहते हो कि मैं उसे नजरें फेर लूं, क्या इंसानियत का सबब यही कहती है?
2: तुम्हारे मुताबिक चंद अच्छाइयों के कारण अनुपयोगी और बेमतलब की चीजों को इंसान जोक की तरह चिपकाए रखे। मनीष मेरी मानो तो तुम वक्त रहते मधु से तलाक ले लो।
0: उस औरत से तलाक कैसा मनोज, जो खुद मुझसे दूसरी शादी रचाने की जिद करती हो। और रही बात अनुपयोगी और बेमतलब की, तो मनोज मधु कोई भौतिक कलपुर्जों का खिलौना नहीं जिसे ऊब कर किसी नादान बच्चे की तरह मैं उसे कूड़ेदान में फेंक दूं।
2: आखिरी बार कहता हूं मनीष सोच लो, बंजर धरती की पूजा व्यर्थ है।
0: माफ करना दोस्त, यहां पर भी तुम्हारी बातों से स्वार्थ और खुदगर्जी की बू आ रही है। मधु मेरे जिस्म का हिस्सा बन चुकी है, जवानी के गुरूर में मैं उसे ठोकर नहीं मार सकता।
2: तो क्या मनीष तुम्हारे लिए आंगन में लगे तरु और लतिकाओं की हरियाली ही काफी है, उनमें लगने वाले फूलों और कलियों की कोई अहमियत नहीं?
0: अगर तरुवर पुष्पीय हो तो उनसे फूलों और कलियों की आशा वाजिब बात है, लेकिन अगर किस्मत साथ ना दे तो उसका भी विकल्प है।
2: लगता है तुम अपनी बदकिस्मती से उभरने के लिए कोई विकल्प सोच लिया है।
0: हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा।
2: बताओगे नहीं?
0: अरे इतनी जल्दी क्या है मनोज, वक्त आने पर बता ही दूंगा यार।
2: अच्छी बात है, अब मुझे चलना चाहिए मनीष, काफी देर हो चुकी है।
0: अरे बिना कुछ खाए पिए जरा ठहरो, मधु कुछ लाती ही होगी।
2: अरे यार आज नहीं फिर कभी। अच्छा मुझे इजाजत दो।
0: ठीक है, अब तुम कहते हो तो, पर आते जाते रहना।
2: हाँ हाँ जरूर। अच्छा मनीष बाय।
0: बाय। मधु मधु, अरे मधु तुम रो रही हो, देखो मधु, तुम्हारे जख्मों को कुरेदने का कोई इरादा नहीं था। मनोज की बातों से तुम्हें जरूर दुख पहुंचा होगा।
1: हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं और

0: तुम कुछ करने से तो रहे, अब मुझे ही कुछ करना होगा।
1: क्या?
0: हाँ।
2: पर मधु,
0: देखो मनीष, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो मेरा कहाँ मान लो।
1: कौन सी?
0: मेरी छोटी बहन से शादी कर लो मनीष।
1: पागल हो गई हो मधु, तुम एकदम पागल हो गई हो। जानती भी हो क्या कह रही हो तुम?
0: मैं जो कह रही हूं भली भांति जानती हूं,
1: पर मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मुझे मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता।
0: मेरी खातिर मनीष, तुम्हें यह बात माननी ही पड़ेगी।
1: अब पर मधु,
0: देखो मनीष, मैं और ज्यादा कटाक्ष सहन नहीं कर सकती। लोग बड़े बेरहम हैं।
1: लगता है अब वक्त आ ही गया।
0: हाँ मनीष, तुमने काफी देर कर दी।
1: ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया।
0: सच? सच मनीष?
1: हाँ मधु, सच।

0: मनीष, ये कौन सी जगह है?
1: अंदर तो चलो, सब पता चल जाएगा।
2: आइए आइए मिस्टर मनीष।
1: हेलो मिसेस डिसूजा, ये है मेरी पत्नी मधु।
2: अच्छा अच्छा मिस्टर मनीष, फोन पर यह जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे अनाथालय से बच्चा गोद लेना चाहते हैं।
1: हाँ मिसेस डिसूजा, इसीलिए तो हम आए हैं।
2: पर तुमने यह नहीं बताया कि तुमको लड़की लेनी है या लड़का।
1: मिसेस डिसूजा, भविष्य सदा अनिश्चित होता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके एक नहीं बल्कि चार चार और भी अधिक बेटे हैं। अच्छी पारिवारिक स्थिति है, फिर भी वो वृद्धाश्रमों में दिन बिता रहे हैं। और वैसे भी लड़कियां आजकल लड़कों से किसी मायने में कम नहीं, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं आपके अनाथालय से एक लड़की गोद लूंगा। मुझे एक नन्ही कली चाहिए।
2: पर तुम्हारी पत्नी को?
0: मेरी पसंद मनीष की पसंद से अलग नहीं है।
2: वाह, तुम लोगों का ख्याल बहुत ऊंचा है। अगर सब लोग तुम्हारे जैसे सोचने लगे तो न केवल लाखों अनाथों का उद्धार हो जाए बल्कि समाज में नारी की प्रतिष्ठा में भी काफी इजाफा हो जाएगा। और हाँ, आप सिस्टर से मिल लीजिए।
1: थैंक यू वेरी मच मिसेस डिसूजा, अब हम चले।
2: ओके।

0: मधु मधु तुम रुक क्यों गई?
1: मनीष तुमने मुझे बिना बताए चुपके चुपके सब काम निपटा लिया।
0: अरे सरप्राइज बाबा सरप्राइज। लो संभालो अब इस नन्ही कली को। लो इसने तो गीला भी कर दिया।
1: लगता है अच्छी बनेगी बाप बेटी में। लाओ मुझे दो। अरे अरे लोना नहीं लोना नहीं। आजा आजा।
2: अरे अरे मिले पहले बेटा। अरे पप्पा पास आजा पप्पा पास आजा।
1: ले ले ले कुछ।

अभी आप सुन रहे थे तिलक चंद देवांगन के द्वारा लिखा नाटक नन्ही कली। प्रतिभागी कलाकार थे मनीष मंडल, शेफाली शर्मा, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, सुनीता बर्मन। इस नाटक के निर्देशक थे शाहिद हुसैन।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: और अब पेश है मधुरी माँ। सुना है कि आपके दीदार के लिए तो आईना भी तरसता है। सुना है कि आपके दीदार के लिए तो आईना भी तरसता है। पूछते थे ना हमसे कितना प्यार है हमें तुमसे, लो अब गिन लो मेरी आंखों में।

आपके आने से मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, आपके आने से मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। दिल में बसी है जो वो आपकी ही सूरत है। दूर जाना नहीं हमसे कभी भूलकर भी, दूर जाना नहीं हमसे कभी भूलकर भी। ज़िंदगी के हर पड़ाव पर अब मुझे हर कदम पर आपकी ही ज़रूरत है।

तेरी मुस्कान से जहां रोशन हुआ, तेरी मुस्कान से जहां रोशन हुआ, तेरी हंसी से मेरा आसमान महका। तू जो पास हो तो, तू जो पास हो तो हर घड़ी खास है, तेरी बाहों में ही मेरी सारी प्यास है।

तेरे बिना अधूरी है मेरी जिंदगी, तेरे बिना अधूरी है मेरी जिंदगी, जैसे बिना चांद की रात है अधूरी। तू मेरी धड़कन, तू मेरा सुकून, तू मेरी धड़कन, तू मेरा सुकून, तेरा साथ हो तो हर लम्हा खूबसूरत है।

ये थी आज की मधुरी माँ। मधुरी माँ के इन्हीं गीतों के साथ ही आज के नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम से मुझे यानी शीबा सिंह को दे अनुमति। नमस्कार।

ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
3: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
7: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
8: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
7: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
9: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
7: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
10: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के

0: फरबुरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमरीका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
4: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
3: Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council, NEC, in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made on tourism, agriculture and horticulture, investment promotion and handloom and handicrafts. Union Minister for Development of Northeastern Region, Jyotiraditya Sindhya, Minister of State Sukanta Majumdar, governors and chief ministers of all the 8 northeastern states, other members of NEC and senior officers of central and state governments will be present at the meeting. U.S. Secretary of State Marco Rubio told lawmakers that the United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. Responding to questions about his recent visit to India during a House Foreign Affairs Committee hearing last night, Rubio said Washington and New Delhi are nearing completion of the pact. We have a report.
5: Secretary Rubio repeatedly highlighted India as an important strategic partner in the Indo-Pacific, signaling growing momentum in economic ties between the world's largest and oldest democracies. He said his visit to India also included discussions with counterparts from the Quad, a grouping comprising India, the United States,

जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विभिन्न बोलियों में लोकगीत कार्यक्रम लोकमंजरी में। बलबीर सिंह कच्छ और साथियों के स्वर में लीजिए सुनिए हल्बी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे शेख हुसैन और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक मंजरी कार्यक्रम में विभिन्न बोलियों में लोकगीत।
1: तीनों कॉलेज ने
2: चिंता नहीं करा,
1: फीस तो दाख।
3: हे हे, काय हाल है, काय होली आए?
2: फीस जो फिकर
3: राहुल, जो बैंक खाता तो आसीचे बाट सर सरा, बैंक ले काम पड़ लो इतरो पीला पढ़ाई कर जा सर सरा मेरे दे और हुन

0: लाख तक बिन जट जट चो आए हुन कहां से मिठाई
1: आरबीआई वाले से
2: नंगत करा मूर लेन देन बेरा रहा चतुर
3: लोक मंजरी कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए सुनिए रामू बिसाई और साथियों के स्वर में भत्री लोकगीत।

सुने बेस्ट प्रभु पोचारला अरे यार इंद्र देवता चार जुगे तो के इंद्र कौन दिलिया छे मुही तोर कौन चढ़ाईने सीखे तोर कौन चढ़ाईने सीखे नहीं नहीं कदा खुर्नो दानी प्रति दिने उठो बारो दानो धैयो छी से विचार करला काना कुड़िया ग्रबी दुखी रोहित मंगलांगो रांडी दुखी ब्राह्मण बोय

से राजा कुर्नो दानी घरे घरा से सिंह दुआरे बेसे मुंडा से हरि विष्णु प्रभु निराकार विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु बोले तो पोला।

अभी आप सुन रहे थे रामू बिसाई का गाया भत्री लोकगीत। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे थे लोक मंजरी कार्यक्रम में विभिन्न बोलियों के लोकगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से

0: एक ही काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
0: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे एनसीईआरटी का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
0: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूमि कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है।
0: जी
1: तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
0: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है एनसीईआरटी की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
0: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
0: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहां जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है
0: जी
1: और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
0: जी वहां पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी
0: पहले वहां के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है,
0: जी
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
0: जी
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
0: जी
1: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
0: जी
1: जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजी जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ हाँ जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे मैग्नेटिक हिल,
0: बिल्कुल याद है।
1: जहां यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो
0: जी
1: वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहां पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है, जो वाहनों को खींचती है।

0: लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते, ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
0: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
0: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।

0: भारत अर्थात इंडिया।
1: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
2: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. It goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
3: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
1: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
4: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
5: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
4: सर।
5: तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश।
4: क्या अभी आपके पास समय होगा?
5: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
4: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
5: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
4: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
5: अच्छा।
4: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
5: और
4: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
5: हाँ, बोलो।
4: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
5: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
4: 5000 वर्ष पहले?
5: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
4: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
5: अच्छा, ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
4: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
5: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
4: अच्छा।
5: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
4: जैसे
5: इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
4: वैदिक समूह?
5: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
4: भरत?
3: भरत नाम तो हमने सुना है।
5: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
4: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
5: हाँ।
4: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
4: अच्छा।
5: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
3: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
5: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
6: वो क्या सर?
5: वो ये कि 6वीं शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
4: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
6: भला ऐसा क्यों?
5: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
4: अच्छा।
5: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
6: हाँ, ऐसा कैसे?
5: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
6: ओ।
5: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
4: हिंदू।
5: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
6: तो फिर?
5: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
6: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
5: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
4: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
5: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
6: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
5: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
5: बिल्कुल।
4: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
5: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
6: अच्छा।
5: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
4: अच्छा।

0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
1: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ,
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ।
0: हाँ,
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ।
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम है, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सब्जी साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
6: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
7: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
8: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
7: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
8: हाँ पूछो बेटा।
7: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
8: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
6: लेकिन माँ,
8: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
7: जी
8: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
7: अच्छा माँ, ये लो माँ।
8: ला।
6: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
7: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
8: क्या मिल गया
7: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
8: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
7: मुझे मिल गया।
6: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
8: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
7: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
6: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
7: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
8: कुछ हाँ? भी तो नहीं।
6: कुछ भी तो नहीं है।
7: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
6: वो तो है मगर
7: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
6: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
7: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, है?
6: हाँ।
7: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
6: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
7: ठीक है, आओ मेरे साथ।
8: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
5: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
9: अरे अरे
10: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
11: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
12: हाँ भाई,
10: भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
11: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
10: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
11: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
10: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
12: भाई साहब हट जाइए।
11: आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
10: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
11: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। हाँ? वो देखो टोकरे में। हाँ,
10: अरे अरे, अरे, अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
11: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
10: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो।
11: हाँ?
10: स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
11: और, हाँ? और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
10: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है।
11: कमाल कर दिया
10: बच्चों ने। ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
11: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
10: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
11: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
10: अरे शाबाश, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
11: वो देखो वो देखो, गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो।
10: अरे अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
5: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार, नमस्कार।
13: उमंग उमंग उमंग उमंग।
14: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सन 2000 में प्रदर्शित फिल्म क्या कहना के गीत। फिल्म क्या कहना के निर्माता कुमार तैरानी और रमेश तैरानी हैं। फिल्म की कहानी लिखी हनी रानी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू के युगल स्वर में कार्यक्रम का पहला गीत टिप्स फिल्म्स के बैनर तले सन 2000 में बनी फिल्म क्या कहना, हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म का निर्देशन किया कुंदन शाह ने, फिल्म की कहानी लिखी हनी ईरानी ने और फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी और कुमार तौरानी। श्रोताओं, ये जो फिल्म थी इसमें प्रीति जिंटा ने एक किशोर माँ की भूमिका अदा की, जिसमें सैफ अली खां पिता के रूप में हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

फिल्म क्या कहना में मुख्य भूमिकाएं निभाई प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, चंद्रचूड़ सिंह, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, राजीव वर्मा, देवेन वर्मा, मामिक सिंह, रीता भादुड़ी, नवनीत निशान और रीमा लागू। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सन 2000 में प्रदर्शित फिल्म क्या कहना के गीत। फिल्म क्या कहना के गीतों को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया राजेश रोशन ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को स्वर दिया है कुमार शानू, सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

फिल्म क्या कहना के गीतों को अपनी आवाज दी कुमार शानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, उदित नारायण और सोनू निगम ने। फिल्म क्या कहना के लिए फिल्म क्या कहना की कहानी के लिए हनी रानी को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वर में आप सुन रहे हैं फिल्म क्या कहने का ये गीत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे सन 2000 में प्रदर्शित फिल्म क्या कहना के गीत। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनावों के लिए आज हो रही है मतगणना। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 5 नगरीय निकाय अध्यक्ष, 71 पार्षद, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की मतगणना इस समय चल रही है। मतों की गणना प्रदेश के 13 निर्धारित मतगणना केंद्रों में की जा रही है। मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए 395 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पहले ही हो चुकी है, इसके नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांजगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेजों के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। विभाग के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों का चयन दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला गणवेश वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। इस बार बच्चों को इनके दोनों सेट एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले ही वितरण प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से पहले विद्यार्थियों तक यूनिफॉर्म पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई है। दुर्ग जिलों में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से लौटे 3 लोगों को इबोला वायरस का संदिग्ध मानकर उनकी निगरानी की जा रही है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को संबंधित लोगों की पहचान कर उन्हें होम आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इथियोपिया और युगांडा से आए 2 व्यक्तियों के अलग अलग एयरपोर्ट के जरिए सीधे दुर्ग पहुंचने की जानकारी दी थी, जबकि कांगो से लौटा एक व्यक्ति पहले मुंबई में रुका और इसके बाद दुर्ग पहुंचा। प्रदेश में इबोला वायरस से जुड़े संदिग्धों का यह पहला मामला सामने आने के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि खेती केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का आधार है। रायपुर में दूरदर्शन द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों से चर्चा की। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ड्रोन तकनीक, नैनो उर्वरकों, जैविक खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने किसानों से नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था की गई है तथा कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी रखी जा रही है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमना में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे। प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूर्व गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिन्दी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 14.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन, इसमें सुनिए शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। पहला गीत फिल्म वारिस से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत उत्तम सिंह का। ये गीत आधारित है राग पहाड़ी पर।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए राग अहीर भैरव पर आधारित ये गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म हैसियत से। स्वर दिया है यशुदास ने, गीत रचना इंदिवर की।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से गुलशन कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत हीरो। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये गीत आधारित है मिश्र श्याम कल्याण पर।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गुलशन कार्यक्रम में शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत मारू बिहाग। लीजिए सुनिए इस राग पर आधारित फिल्म रामलखन का ये गीत, स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के शब्दों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म छोटी सी बात से। यह गीत आधारित है राग पहाड़ी पर। गीत रचना योगेश की, संगीत सलील चौधरी का।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत कार्यक्रम गुलशन के अंतर्गत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड़दुम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कलावती और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से गुड़दुम कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलावती और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड़दुम। इसमें आज आप सुन रहे थे कलावती और साथियों का गाया ध्रुवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेत्री नूतन अभिनीत फिल्मों के कुछ गीत।

वह अभिनेत्री जिनकी मुस्कुराहट, उनकी सादगी, उनका स्टाइल दिलों में घर कर जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये दास्तां है लीजेंडरी एक्ट्रेस नूतन की। नूतन जी का जन्म 4 जून यानी आज ही के दिन सन 1936 में हुआ था। पिता कुमार सेन समर्थ डायरेक्टर भी थे और एक कवि भी। माँ शोभना समर्थ एक जानी मानी अभिनेत्री थी। चार भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थी। इनकी माताजी शोभना समर्थ ये चाहती थी कि नूतन बतौर हीरोइन फिल्मों में आए। खुद शोभना समर्थ ने एक फिल्म बनाई जिसमें नूतन जी को लॉन्च किया। फिल्म का नाम था हमारी बेटी। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं नूतन अभिनीत फिल्म खानदान का गीत।

श्रोतो, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सन 1952 में नूतन जी ने मिस इंडिया का टाइटल जीता था। ये वो वक्त था जब किसी भी हीरोइन के लिए एक्सपोज करना बड़ा कठिन था, और ये बात साफ करती थी कि नूतन की माँ शोभना समर्थ वाकई बड़ी ही आजाद ख्यालों की है। अभिनेत्री नूतन जी की माँ ने ही उन्हें स्विट्जरलैंड भेजा था ताकि नूतन विधिवत तरीके से एक्टिंग सीखे और फिर इंडिया आए। तो लीजिए सुनिए नूतन अभिनीत एक और फिल्म का गीत। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: श्रोताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: तीनों कॉलेज ने
3: चिंता नहीं करा,
2: फीस तो दाख।
4: हे हे, काय हाल है, काय होली आए
3: फीस जो फिकर।
4: राहुल जो बैंक खाता तो आसी चे बाट सरसरा, बैंक ले काम पड़ लो इतरो पीला पढ़ाई कर जा सरसरा मेरे दे, और हुन बोले 4 लाख तक दिन झट चो आए। हुन कहाँ से मिठाई
5: आरबीआई वाले से
6: नंगत करा मूर लेन देन बेरा रहा चतुर।
7: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेत्री नूतन अभिनीत फिल्मों के कुछ गीत। श्रुतो, अभिनेत्री नूतन एक तरफ देवानंद साहब के साथ फिल्म तेरे घर के सामने और पेंगेस्ट जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम कर रही थी, और दूसरी ओर राज कपूर के साथ अनाड़ी और छलिया ने भी बॉक्स ऑफिस में धूम मचा रखी थी। तो आइए सुनते हैं फिल्म अनाड़ी का ये गीत।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेत्री नूतन अभिनीत फिल्मों के कुछ गीत। श्रोताओं, इमोशनल और रोमांटिक फिल्में करने के साथ साथ नूतन को साथ मिला महान डायरेक्टर विमल रॉय का। विमल रॉय साहब के साथ नूतन ने फिल्म बंदिनी और सुजाता में काम किया। इन दोनों ही फिल्मों में नूतन ने साबित कर दिया था कि इनके जैसी अभिनेत्री कोई और नहीं है। इनके पास मासूमियत है, जज्बात है, अभिनय क्षमता है और रोमांस भी है। तो आइए सुनते हैं फिल्म बंदिनी का ये गीत।

अभिनेत्री नूतन सुनील दत्त साहब की के साथ जोड़ी भी खूब सराही गई थी फिल्म मिलन में। इसके लिए इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया था। और कमाल की बात यह है कि स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन जब फिल्म सौदागर में नजर आए थे तब इन्हें नूतन जी के सशक्त अभिनय का सहारा मिला था। नूतन के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि 11 अक्टूबर सन 1959 में इनकी शादी हुई नेवल लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से। शादी के बाद भी नूतन जी ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा और ऐसी फिल्मों में नजर आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर दिया। तो आइए नूतन अभिनीत एक और फिल्म का गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है मिलन।

ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं श्रोताओं की नूतन जी एक प्रशिक्षित गायिका भी रही। अक्सर स्टेज शोज पर वो गाना गाया करती थी। इनका करियर काफी लंबा रहा, पर एक कसक इनके दिल में रह गई थी कि राज कपूर, देवानंद, बलराज साहनी, धर्मेंद्र जैसे जबरदस्त अभिनेताओं के साथ ये फिल्मों में अभिनय करते नजर आई थी, पर इन्हें कभी मौका नहीं मिला अभिनेता दिलीप कुमार के साथ काम करने का। और 80 के दशक में मौका भी इन तक पहुंचा डायरेक्टर सुभाष घई साहब की एक फिल्म के माध्यम से। वहां फिल्म थी कर्मा, जिसमें नूतन और दिलीप कुमार के साथ अभिनय करते हमें नजर आई। तो आइए अब सुनते हैं फिल्म कर्मा का ये गीत।

ये वो वक्त भी था जब नूतन जी धीरे धीरे करेक्टर रोल की ओर बढ़ रही थी, और फिर फिल्म मेरी जंग में इनके अभिनय को कौन भूल सकता है। ऐसा लग रहा था कि अभिनय के क्षेत्र में नूतन जी नई कीर्तिमान स्थापित करेंगी, पर तभी किस्मत ने वो करवट ली जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। उन्हें कैंसर से पीड़ित पाया गया और सन 1991 तारीख 21 फरवरी मात्र 54 साल की उम्र में दुनिया छोड़ चली गई। यकीनन नूतन जैसी अभिनेत्री ना कोई थी और ना कोई होगी।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही कलाकार अब संपन्न होता है। इसमें आज आप सुन रहे थे अभिनेत्री नूतन अभिनीत फिल्मों के कुछ गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन, क्षमा कीजिएगा, प्रस्तुत है कार्यक्रम गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम का पहला गीत आदेश श्रीवास्तव की आवाज में श्याम राज की रचना है और आदेश श्रीवास्तव का संगीत है।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। इसमें आज आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत और गजल। कार्यक्रम की अगली गजल अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में, बोल तस्नीम फारकी की है, धुन बनाई है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान

0: ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
3: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
5: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। सुब्रत के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अभिजीत ने, स्वर अभिजीत का ही है।

0: आशा भोसले की गई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम गुलदस्ता संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना, तहसीलदारों ने हड़ताल स्थगित की, आज से काम पर लौटे। और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 5 नगरीय निकाय अध्यक्ष, 71 पार्षद, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की मतगणना इस समय चल रही है। मतों की गणना प्रदेश के 13 निर्धारित मतगणना केन्द्रों में की जा रही है। मतगणना कार्य सम्पन्न कराने के लिए 395 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पहले ही हो चुकी है, इसके नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। शासन स्तर पर हुई सकारात्मक चर्चा, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर और वैधानिक कार्रवाई शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश स्थगित करने का फैसला लिया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज से नियमित काम पर लौटेंगे। गौरतलब है कि सरगुजा के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा के मामले प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक विरोध जताते हुए सामूहिक अवकाश पर थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला गणवेश वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। इस बार बच्चों को इसके दोनों सेट एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले ही वितरण प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। 16 जून से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से पहले विद्यार्थियों तक यूनिफॉर्म पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई है। दुर्ग जिले में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से लौटे 3 लोगों को इबोला वायरस का संदिग्ध मानकर उनकी निगरानी की जा रही है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को संबंधित लोगों की पहचान कर उन्हें होम आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इथियोपिया और युगांडा से आए 2 व्यक्तियों के अलग अलग एयरपोर्ट के जरिए सीधे दुर्ग पहुंचने की जानकारी दी थी, जबकि कांगो से लौटा एक व्यक्ति पहले मुंबई में रुका और उसके बाद दुर्ग पहुंचा। प्रदेश में इबोला वायरस से जुड़े संदिग्धों का यह पहला मामला सामने आने के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेजों के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। विभाग के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों का चयन दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कल 5 जून को रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विषय पर संगोष्ठी तथा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल गौरेला पिंडा मरवाही जिले के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना, तहसीलदारों ने हड़ताल स्थगित की, आज से काम पर लौटे। और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले में मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं।
1: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम पाटा विनार। इसमें आज सुनिए जयती नाग और साथियों का गाया ध्रुवी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पाटा विनार। इसमें आज आप सुन रहे थे जयती नाग और साथियों का गाया ध्रुवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

0: स्वरोजगार करू दीदी इली से सबले आगे तू चुनाव आरु गांव चुनाव संग
1: मुझे नाम श्रीमती अनीता यादव है, मैं पंडा नारचो है, परचन पाल में दुकान बना लू से।
0: अच्छा बोले ने गांव तुम चु पंडा नार है।
1: जी मुझे गांव पंडा नार है, तो काम धंधा चक्कर में तने कायत नहीं हो तो के आमी पंडा ए परचन पाल में दुकान खोल लू से।
0: बोले
1: परचन पाल ही अभी आंसू आमी उते।
0: बोले ने परचन पाल तो मेन रोड है,
1: हाँ हाईवे रोड ने,
0: हाईवे रोड आना जाना,
1: आना जाना रोड ने तने दुकान खोल लू से, नाश्ता बनाऊ।
0: अच्छा नाश्ता?
1: हाँ नाश्ता बड़ा भजिया इडली डोसा समोसा बनाऊ।
0: अच्छा तो आगे तुम चु गांव ने बता बनात रहला?
1: हाँ गांव ने बनात रहो 17-17 मन मन मन ये भी फिर मचो पति वाला हम बल देखुन बहुन हम बले सीख लू और हम बले ये थाने खोल लू लग जगह नहीं हो तो के थाने परचन पाली लू और थाने खोल लू से दुकान।
0: अच्छा तो कितलो दिन सन होली जाले?
1: होली 4-5 महीना होली से।
0: 4-5 महीना होली?
1: हाँ
0: अच्छा तो ये जो ये भी सांगली से जसन की इडली है, डोसा है, समोसा है, जोन बल बनाए साज, तो एक मतलब तुम ही सीख तो हिसाब ने बोले कहाँ घर सीख लास की
1: उन मचपति कहा सीख ला उन मके सिखा ला तो बनावा कहीं दुकान ले सीख लास नहीं तो।
0: अच्छा बोले कुन दूर?
1: हाँ दुकान ले नहीं सीख ला
0: अच्छा
1: तखन भातिल ऐसे बना तो कैसे देख ला कहीं सिखा बल्ला होती तो
0: हाँ
1: सीख ला और फिर मके बल्ले सिखा ला तो आमी हुनी ठंडा करूँगा।
0: अच्छा हाँ, तो ये जैसन कि ये सब चीज बनात का जे बोले कई सामान जैसन कि लागे से चाट मतलब कढ़ाई वगैरह है सब जोन बल जिनिस है, तो ये सब तुम चो लगे आसे बे?
1: आसे।
0: अच्छा जैसन कि इडली बनात रहे
1: इडली
0: सांचा?
1: बनात का इडली सांचा आसे उन कुकर में इडली कुकर ही हुआ है उनमें बनाऊ हमें।
0: अच्छा हाँ बोले ने सब पूरा जमक आसे
1: हाँ
0: बोले?
1: आसे आसे।
0: अच्छा हाँ, तो ये भी परचन पाल बोले कितलो दिन में आसन होली जाले था खोल लो?
1: ये परचन पाली लो राम चो 4-5 महीना होली से।
0: अच्छा
1: हाँ
0: 4-5 महीना?
1: लगभग लगभग 5 महीना हो से।
0: अच्छा हाँ, तो ये जैसन कि तुम जितलो बोले ये नाश्ता बीते जो सामान बनाए साथ, तो बोले ने रोजे अच्छा चले से?
1: चले से सर अभी नवा नवा आए बोलते स्कूल पिला मन छे सब लक्ष्य लोग मन
0: हाँ
1: करुआ दिन चोसनी
0: अच्छा
1: 1000 रुपया जसन बिकवा 1200 जसन
0: हाँ, तो
1: चले।
0: ये बोले ने खोल तरल ने कितलो टाइम ले बन दिन ने की?
1: बियान दाय खुलवाऊ 8 बजे
0: हाँ
1: और शाम तक चलो स्कूल पिला मन जो 4 बजे छुट्टी हुआ है तो होनी सिस्टम 4-5 बजे तक रहुआ उन
0: अच्छा
1: लग फिर परिसर बले आसे तो
0: हाँ
1: उन्हीं कारण ने चार
0: हाँ
1: पाँच बजे तक चलुआ है।
0: अच्छा हाँ बोले
1: चाय वाय
0: बियान?
1: बोले हाँ सर मैडम बली लो में चाय वाय बनाऊ बोले चाय वाय बोल बनाऊ।
0: अच्छा हाँ, तो ये और ये सांग जैसन की बल्ले ने पूरा जोन बना तो भी थी जोन सामान है बोलू बे आटा है नहीं तो मैदा है नहीं तो बेसन है, बल्ले ने 19 दिन तैयार कर सास की
1: हाँ
0: आगे?
1: सुबह टाइम ची तैयार करूँ बड़दाई उठून भातिल नहाना धोना हो उन भातिल सब कायत करूँ अपना अगरबत्ती जलाऊन भातिल पूरा आटा गुथुआ मैदा ए, मैदा समोसा बनात का मैदा गुथुआ आलू उबालुआ उन सब ले फिर मसाला वगैरह बनाऊँ आलू उबालून उनके मसाला बनाऊँ और फिर कायत करूँ आटा
0: अच्छा
1: फिर बेलून भातिल समोसा काजे पट्टी काटून मोड़ू पाचे फिर मसाला बनाऊन
0: अच्छा
1: मस्त।
0: हाँ
1: और इडली वगैरह तो सब रात के पिसुन भातिल इडली काजे इडली सूजी हुआ है उनके पिसुन भातिल राती बेरा थोड़े उनके संगा उपड़ हुआ है थोड़े काय तो अम टाले जसन हो दे
0: हाँ
1: तो उनके राती बेरा ढापुन गंजी में ढापुन संगा उन दे वहाँ
0: अच्छा
1: बियान उठुन उनमें नमक सोडा वगैरह डालून भातिल फिर उन कुकर में डालू
0: अच्छा
1: चढ़ाऊ है।
0: हाँ, तो बल्ले ने सबले ज्यादा बल्ले ने काय चीज चो नाश्ता हिसाब ने लोग मने करुआ था ले?
1: समोसा इडली और डोसा
0: अच्छा
1: हाँ जी तो बनाऊ उतरो आइटम मन करुआ जो जो ना आइटम मन करुआ तो उन्हीं आइटम हम बनाऊ
0: अच्छा
1: बताने
0: हाँ
1: समोसा बल मन करुआ
0: हाँ हाँ
1: तो समोसा सुबह टाइम नी मिरुआ है थोड़े उन 10-11 बजुआ है क्योंकि समोसा पट्टी काटतो और
0: हाँ
1: हमी दोनों जन पति पत्नी दोनों ही बनाऊ
0: हाँ हाँ
1: हमी उन काम करतो काजे लोग बल नहीं धरो हम जो खुद जो आए बलते
0: अच्छा
1: खुद करुआ दोनों जन करुआ।
0: हाँ अच्छा हाँ, तो ये जैसन की बल्लिस जोन एचो जोन प्लेट हिसाब ने दे साज भी?
1: हाँ प्लेट में दे हुआ
0: अच्छा कसना है एचो
1: बीस
0: रेटो?
1: रुपया प्लेट है समोसा बल 3 पीस है 20 रुपया जो 3 पीस समोसा दे हुआ इडली वाले 3 पीस है।
0: अच्छा और डोसा?
1: डोसा 30 रुपया प्लेट
0: 30 रुपया?
1: हाँ एक प्लेट
0: अच्छा
1: डोसा का जो सांबर बनाओ चटनी बनाओ नारियल चटनी
0: हाँ
1: और लाल चटनी बनाओ एक
0: अच्छा
1: और सांबर
0: हाँ हाँ हाँ हाँ तो
1: दोनों।
0: ये

0: ये सब चीज जैसे कि चटनी वगैरह बना तो भी थी जो सामान आए बोलू भी ये
1: हाँ
0: पूरा तुम चु लगा से बोलू
1: हाँ
0: भी।
1: मिक्सी में पीसू नान भाते
0: हाँ हाँ अच्छा
1: तो,
0: जैसे कि चटनी वगैरह काय काय चीज चो बने से जाले।
1: चटनी लाल चटनी बनाते, टमाटर संग बनाऊ, टमाटर सरसों मीठा पत्ती हरी मिर्च
0: अच्छा
1: प्याज वगैरह संग लाल चटनी बनाऊ,
0: हाँ हाँ
1: और नारियल चटनी नारियल मूंगफली संग बनाऊ,
0: अच्छा
1: उनके पीसू
0: हाँ हाँ
1: भुंजुन भातिल,
0: हाँ हाँ
1: और फिर उनमें नमक डालून, फिर कड़ी पत्ता संग फ्राई करूँ।
0: अच्छा हाँ हाँ तो जैसन कि तुम्ही पढ़ना नार लेता रोड लगी लास तो बोले ने तुम जो ठान का है कहीं सरकारी भी ठान है कि तुम खुद बना ले।
1: नहीं इसने किराया नहीं आंसू है भी,
0: अच्छा अच्छा ये किराया ना सा।
1: हाँ किराया कने इलो से
0: हाँ
1: अपना, अब नौकरी चाकरी ना आए तो
0: हाँ
1: रोजी रोटी कमा तो काजे को नहीं लग, बोले पीला झीला के पोस्त तो काज को नहीं लग तो जाओ पड़े दे,
0: हाँ हाँ उन तो
1: तो
0: आए
1: उन्हीं
0: से।
1: कारण ने पीला झीला आसो तो मन के पोस्त तो राय तो को नहीं लगे, बोले अपना ठिकाना देखुन भातिल उन लगे बना लू से आमी,
0: हाँ
1: हम चे बे रोजी रोटी चले से पीला झीला के पोस लो जसन
0: हाँ हाँ दक असन आए बोले कहीं बोल काम के धीरे धीरे मूर कर
1: धीरे धीरे
0: लेंगे।
1: एक यार कसन हुआ है तो धीरे धीरे ही करते जाऊ।
0: हाँ। तो ये चुका जो तुम्हें कहीं बैंक वगैरह कहीं पैसा वगैरह बोलो उधर
1: मैं
0: उधर।
1: समूह ने जुड़ ले से समूह थान ले बोले थोड़े मके मिर लिया मैं निकर रू दिलाए समूह जो काय तले
0: हाँ
1: लोन
0: हाँ
1: निकर रू आमी, तो उन
0: अच्छा
1: थान ले बोले थोड़े पूरा ले थोड़े घर ले बोले अपना मचो पति बोले आमी खेती बाड़ी करूँ आत मचो पति बोले,
0: अच्छा
1: तो उन थान ले बोले थोड़े बहुत दोनों पूरा लू और दोनों जन करूँ मतलब
0: अच्छा
1: मतलब
0: हाँ हाँ तो सोसा था समूह ने
1: हाँ
0: जैसन
1: सोचा था समूह ले जुड़ ले से मैं बोले।
0: अच्छा हाँ तो उतार कितलो पैसा धर ले साले।
1: अबे अबे सब लोग मिला लू से 3 लाख निकला लू से,
0: अच्छा
1: तो उताले आमी धर लू से 28,000 कुछ रुपया
0: अच्छा भले उनके पटा तो कसन
1: पटा
0: आए।
1: तो रहा है, किस्त ने पटाऊं से 1 महीना चो 3,000 बनाऊं बनाऊं पटाऊं से। अबे
0: अच्छा हाँ हाँ भले हर
1: सब
0: महीना।
1: जन हाँ 12 सदस्य आसत मचो समूह ने, समूह
0: हाँ
1: च मैं अध्यक्ष बोले आए,
0: अच्छा
1: तो तन मिलुन जुलुन
0: हाँ
1: सब
0: हाँ
1: बाटले कहते बे आम आप लहान करू आथुनी,
0: हाँ हाँ
1: एक लहान सब अपलाहन पैसा धर ला से अपलाहन कमा सोत,
0: अच्छा
1: सब अपना अपना कौन खेती बाड़ी कर सोत, कौन मुर्गी पालन कर सोत घरे घरे,
0: हाँ हाँ
1: तो मैं अपना ये थाने होटल ने अब बना लू आमी दोनों जन ये बाटे कायत करूँ।
0: अच्छा हाँ हाँ बोले ने समूह ने कितलो लोग आ सताले
1: 12 समूह ने 12 जन आसोत,
0: 12 जन।
1: हाँ
0: हाँ काय नाव संगला सा साल।
1: मचे समूह चे नाम खुशी समूह,
0: हाँ अच्छा हाँ खुशी
1: हाँ
0: समूह
1: खुशी समूह है
0: कहीं कहीं मन ने सोचन बस संगला खुशी बोले कसन हिसाब ने संगला।
1: असन हिसाब ले मतलब असन बना लू से, तो ये सोच लू कि मतलब हम ये 10-12 जन भीड़ लू से तो हम सब काजी अपना अपना ने में 2-4 रुपया बचत करून भातिल चलुआ, तो सबू के खुशी होए दे असन बोलून भातिल आमी हम जो समूह ने खुशी ना
0: खुशी
1: संगा
0: नाम
1: लू,
0: से
1: हाँ
0: अच्छा
1: दू चार
0: बोले।
1: पैसा बचावा,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: एबे क्यों कोनी बाटले बोले नहीं आनु है आप लोग मुनुक आनंद दीवाए के बेचार अठना बचत करून रहने समूह ने संगा हुआ,
0: हाँ
1: तो सबू काजे तुचो काज बल काम है दे मचो काज बल असन सोचन भातिल, तो
0: हाँ
1: सबू के खुशी ले के समूह ले बनावा तो अच्छा होए दे
0: तो उन्हीं
1: बोले,
0: हिसाब ने बोला उसने।
1: हाँ उन्हीं
0: हाँ
1: हिसाब ने आमी खुशी समूह संगाल से।
0: हाँ हाँ बोले ने उसने हर एक उदिम खुशी न रथो काजे बोले ने सब लोग उसने से काम बल कर सत
1: हाँ
0: होती।
1: काम अपना अपना कर सो सब एक संग
0: हाँ
1: सब अपना विकायत करून करून
0: हाँ
1: कर करूं से हुन मन बले अपना अपना सब धर लास अलग अलग कायत कर लू एक संग बांट लू सब पैसा लोन निकरा लू,
0: अच्छा
1: तो हूं ताइले उन सब अपना अपना कर सोत
0: अच्छा बोले ने
1: पटा तो
0: तुम्हें
1: समय में सब जन
0: सब
1: इकट्ठा,
0: मिलुन
1: हाँ
0: बातें।
1: मिलुन भातिल पटाऊ सब इकट्ठा बैठक करूँ उतने पैसा संगाऊ
0: हाँ हाँ
1: सब लोग चो आनंद भातिल, फिर उनके बाद नहीं हुआ पटाऊ
0: अच्छा
1: के,
0: हाँ हाँ तो बोले तुम ये जो होटल चो काम कर साथ बोले ने
1: हाँ
0: बाकी लोग।
1: उन कौन मुर्गी पालन कर सोत, कौन खेती बाड़ी साग सब्जी कमा सोत,
0: हाँ
1: कौन नसनी सब अपना कौन किराना दुकान खोल ला से सब
0: अच्छा
1: अपना अपना
0: हाँ
1: अपना
0: हाँ
1: हुआ,
0: बोले जे चो जो मन
1: हाँ
0: आसे बोले।
1: अपना मन ले कर सो जन,
0: हाँ हाँ
1: और महीना ने उतन पटात का सब अपना पैसा आनुआ तो तने सबके जोंगुआ
0: हाँ हाँ
1: और ने उन भातिल पटाउन दिवा।
0: अच्छा तो ये सांग जैसन कि समूह जोन बना तो के समूह चो जोन गठन कर तो के बल्ले ने कसन लागे तुमके।
1: अच्छा लागे से अबे आमी जसन बायले मन घर ले नी करते रहूं, महिला जसन एबे घर ले 2 पैसा नी निक अब मनु कानून दिलो में आमी करते रहूं, एबे समूह ने जुड़ून भातिल एबे 2 जन लोग के मिलून के लिए मैं बले खुद ए बटले घर ले बाहर बले नी करे ले, पहले तो घर ले असन पीला झीला के दखा ये सब करतोर, अब समूह ले जुड़ून भातिल अब दूसरा लोग के बले बातचीत करतोर बले थोड़े
0: हाँ हाँ
1: डरून डरून बल सही लेकिन करूं से
0: करो से।
1: जरूर,
0: हाँ हाँ
1: हाँ इतर तो थोड़े अपने बले काय थोली काम बल कुछ करुक सकू सब अपने मनुख करे से तो आम ही बले करुक सकू इतर तो काय थोली से भरोसा होली
0: थोड़े बले ने कोनी बाट गेले झिझक
1: मिटली बोले नहीं होए थोड़े पहले जसन डरते रहूं ये बेनवा बे हर जगह ने हर गांव ने महिला मन होला से खड़े होला से तो आमन मन बले थोड़ा आमी बले करुक सकूं असनी सोचन भातिल
0: तो ये सोसाता समूह बनान बाती बले तुम कोनी तन कहीं ट्रेनिंग वगैरह बोले मिली प्रशिक्षण वगैरह
1: हाँ मैं उन्नी कृषि सखी ने मके डालून रला होता ने तो मैं उतन जाऊं रहे बकाउंड ब्लॉक में कृषि सखी का जे
0: अच्छा
1: तो उतने ट्रेनिंग बल दिला कि असन धान पान कमातोर खेती बाड़ी कमातोर सब्जी भाजी जो ट्रेनिंग देव रहो
0: अच्छा।
1: अब मचे एक मैं साल भर जसन कर ले फिर उनके बाद मचो एक ठन छोटे बेटी होली तो उन कारण में जाऊक नहीं सकले तो उनमें अभी दूसरा लोग के रख ला से
0: अच्छा बल्ले ने तुम चो एना पूरा ध्यान होटल ने आसे बोले
1: हाँ खेती बाड़ी बल करूँ साग सब्जी बल कमाऊँ सन नहीं
0: अच्छा
1: घरे
0: घरे
1: हाँ
0: अच्छा
1: पीछे बटे कायत करुआ तो
0: नहीं
1: घर
0: खाली बरसात ने है कि 12 महीना कहीं
1: 12 महीना नहीं करो धान कमाऊँ तरस नहीं बरसात बेरा साग सब्जी
0: साग सब्जी हो
1: हाँ
0: अच्छा बाकी समय का पानी सुविधा नहीं
1: हाँ
0: है।
1: पानी सुविधा है भी तो
0: अच्छा
1: नहीं
0: तो उदक अच्छा तुम सोच लास खेती बाड़ी संगे जसन की स्व सहायता समूह ने जुड़न बाती ये होटल जो काम आए बोलू भी धीरे धीरे करते गए तो कहीं ना
1: हाँ
0: कहीं असन
1: हाँ
0: होटल बड़ा तो का जग
1: हाँ करुक पड़े दे कहीं कहीं
0: करुक
1: बले
0: पड़े दे
1: थोड़े
0: है कि
1: और
0: नहीं।
1: मेहनत कर ले अब जसन बला में अच्छा खुआवा तो पिला मन के दे तो अच्छा लेके आए थोड़े दे ये सोचन भातिल आमी
0: हाँ
1: होटल खोल लू से
0: अच्छा
1: अब भगवान दयाले सबके पसंद देव आम चो नाश्ता पानी
0: हाँ हाँ
1: सब
0: हम तो
1: तो
0: आए
1: नहीं
0: थी।
1: आप
0: हाँ तो काय ना बोल ली
1: अनीता यादव
0: अच्छा अच्छा अनिता यादव ये सांग जसन की होटल खोलला से हुन दिन ले बल्ले तुम चु जीवना ने पैसा कोड़ी हिसाब ने कहीं फरक कहीं लागे
1: थोड़े
0: से।
1: बहुत फर्क इली से का अब इकट्ठा एक ही संग का 2-4 महीना में कहाँ फर्क दिखा दिए
0: हाँ
1: दे लेकिन थोड़े बहुत अब अपना खुद चले अभी मैं खर्चा कर सके 2 पैसा कहीं जाऊन भातले खेनुक सके कहीं तो ये सब ने थोड़े बहुत फर्क इली से
0: अच्छा हाँ
1: जन
0: हाँ
1: हर चीज का जब मनुक आप लोग मनुक ऊपर आभार रहते रहू कहीं ये अलमक पैसा दिया एवे मैं बनाए से खुद बले खोले से तो दुकान खोले से खुद बनाए
0: हाँ
1: तो कोनी बार जा तो काज कहीं घेनु आए जैसे हम चो गाँव मन ने एते रुआत फेरी लोग कुछ कुछ लोग मनानते रुआत पीला काज कहीं घेने दे खाजा घेन दे ने तो
0: खान
1: मनुक ऊपर कायते रहते रहूं ये भाई
0: हाँ
1: मैं खुद कमाऊ आए तो 2 पैसा पीला काज घेनुक सके मैं असन
0: अच्छा हाँ हाँ
1: करुण भातिल तो
0: बल्ले ने खुद चुपाए ने उबाहोल
1: थोड़े
0: रोशन
1: हाउ
0: बरसक लागे से
1: हाउ
0: बोलू
1: खिनिक
0: भी।
1: बले बरसक लागली से थोड़े
0: हाँ, बल्ले ने परिवार चो दूसर लोग चो भरोसा ने दाएं
1: हाँ
0: कम होली
1: हाँ
0: बोले।
1: कम है मैं खुद चो बल पीला झीला बार सो तो खुद चो पाए में बल मैं खड़े हो दे सोच ले और मैं खुद करें से खाली
0: अच्छा हाँ, जसन की ये भी दुकान तो नवा है बोलू भी
1: हाँ
0: तुम्हें आगे बोले ने एक ही आगे बड़ा तो काज कहीं मन ने विचार कर ला सा सोच ला सा आगे का ही असन करूं ने
1: हाँ ये
0: बोल।
1: कि दुकान बढ़ावा बलते सोच लू से असन नहीं दोनों मिलून भातिल करवा
0: हाँ
1: बोलून से क्या थोड़े नाश्ता पानी थोड़े ज्यादा बनावा मतलब और कहीं कहीं जसन रहुआ नहीं ए रोटी सब्जी कहीं कहीं टिफिन वगैरह बोले पीला मन का जी असन बनावा सोच लू से अब
0: अच्छा हाँ
1: आगे का हो तो
0: हाँ अच्छा अच्छा ये बोल सांग थी पढ़ा लिखा कितलो सन पढ़ ले सीजैल।
1: मैं 8वीं पास आ से
0: अच्छा हाँ 8वीं पास होन बाती
1: हाँ
0: छान लेस
1: अच्छा
0: बोले बोले
1: हाँ
0: हाँ
1: छाड़न
0: छोड़ो
1: दिले फिर शादी ब्याह होली
0: हाँ
1: तो
0: हाँ हाँ
1: अब
0: हाँ
1: बाल बच्चे घर में काय तो घर परिवार
0: नहीं
1: देखते रहूं तब
0: हाँ
1: एक दिन दूसरे दिन कितरो दिन देखू अब 17-17 ऊपर बले हमेशा तो डिपेंड रहूक नहीं
0: नहीं
1: पड़े
0: बोल हाँ
1: और
0: हाँ
1: थोड़े थोड़े बले अपना पाए में बल खड़े हो तो राय
0: हाँ हाँ
1: तो पीला जिला बले बाढ़ते सोत बलते कहीं कहीं बल करें दे बोले मैं बले
0: हाँ हाँ
1: दूसरा लोग से दखुन दखुन बले थोड़े सीखें दे
0: सीखे
1: सोच ले
0: अच्छा हाँ उन तो आए कि मतलब जीवना ने तो कहीं ना कहीं मेहनत मशागत करू पड़े से
1: हाँ बिना
0: काय
1: मेहनत कर लो और काय मीरे दे
0: मेरे दे। हाँ
1: यही सोचन
0: बोले
1: भातिल मैं पिला झिला मन के स्कूल पठाऊ मैं
0: हाँ
1: बड़दाय करूँ आए
0: अच्छा हाँ
1: नाश्ता
0: तो आले अनिता यादव तुझ संगीत लो अच्छा बोले तुम जो स्व सहायता समूह और तुम जो जन होटल खोल लो बीती ये सब गोट के सांगलिस तुम जो ये भी नवा नवा है
1: हाँ
0: फिर के भी असन अच्छा उन्ती बाढ़ती होली जाले फिर गोड़ बात करवा तो
1: हाँ
0: तुम चुनती बाढ़ती बोले सांग से
1: हाँ
0: जैसे उनका है कि आम जो दूसर बहन मन बोले जोन खिंडिक बोल पढ़ लिखुन फोका आसोत घरे आसोत काई नहीं कर सोत तो असन लोग मन का जो काय कि तुम चो असन जोन करे से गोट के सुनन बातें उन मन के बोले गोटोक बाट मी रह दे
1: हाँ
0: है कि नहीं
1: हाँ
0: तो आल खूब खूब जुआर
1: जुआर
0: जु
1: जुआर हाँ तो दीदी मन
2: कितरो नंगत गोट मन के सुनलु कि अनिता दीदी मन नाम के कितरो नंगत गोट मन के सांगला कि कसन आमी घर चो बूता संगे संगे दूसरा काम बूता करून बाती आप लोग काजे चार पैसा कमानी करू सकू। चार पैसा कमानी कर लू ने आमचो आत्मसम्मान बाढ़े से और संगे संगे घर परिवार चो मदद करू बले होए से। तो दीदी मन इतरो नंगत गोट मन के सुन लू और नंगत गोट मन सुन लो ने मन खूबे हरी खून जावा और मन हरी खोलो ने गीत गोविंद सुनुक भावा। तो असनी गीत आसे ये गीत कुरिया मनाद दीप किशोर भटनागर और हुन मंचो संगवारी अलेते भी ये गीत के सुनू।

हाँ तो दीदी मन कितरो रसरसिया गीत के सुन लू गीत गोविंद असन आए कितरी सुनते रलो ने भले मन नहीं भरे और सुनुक सुनुक भावे तो मुझ मुड्रा ने असनी और गीता से ये गीत कुरिया मन काय सुंदर बाजा गाजा धरुन बाती अमरला सोत ये गीत कुरिया मन चो नाम आए मोरिस सिंह और हनुमान चो संगवारी अले ते भी ये गीत के सुनू।

0: हाँ तो दीदी मन काय रसरसिया गीत के सुन लू, गीत गोविंद संगे संगे नंगत गोट मन के बले सुन लू। तो दीदी मन रोजी दिना असन आमी नंगत गोट मन के सुनु से और हुन नंगत गोट मन ले आमके कई न कई सिखुक मेरे से। ज्ञान ध्यान चो गोट मन असन आए कि सुनते रलो ने नंगत लागे से, मानतर आमके समय के बले ध्यान देव पड़े से। समय ने गेलो ने समय ले एक हुआ है। तो दीदी मन मुचो जातो समय होली, फिर कुनी दिने हुनी समय ने भेट काउं ढूं दे, जातो पूरे मौके विदा दिया एची संगे घर द्वार सुनतो सपाए दीदी मन और मुचो संगवारी बहन मन के मैं सेवती करें से जुहार।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का

0: 70वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट।
3: गांवकारी किसान भाई मन, जड़ी बूटी ले बना लुती ये कीटनाशक दवाई हो से जेके जैविक कीटनाशी बले बल सो तो असन कीटनाशी जड़ी बूटी मन बल्लो ने जसन की लीम होली उसनी ची सीन कोना बलुआत असन जोन जोन जड़ी बूटी बल्लो ने ये बूठा मन ले बना लुती दवाई आए तो पनाय बोल सांगले की एक जैविक कीटनाशी बसत असन जैविक कीटनाशी के आमी आप लोग फसल ने रोग राई मन के गुच्छा तो काम नहीं आनलो ने ये चोले काय हो सी आमचो देह हाथ पाए बोले उन फसल के खाद लो नी ना से और आमचो जमीन बोले अच्छा ले अच्छा रह से। तो गांवकारी किसान भाई मन असनीची गोटक ये खोजला से कि लीम ले बोले आमी कहे किसम चो रोग रही मन के गुच्छाक लाई सकू तो नीम बले गोटोक जैविक कीटनाशी भीतरे वैसे और ये लीम चो जोन बूटा वैसे ये तक कहे किसम चो रोग गुच्छा तो जीनिस रह से जेके बल सोत लेमोनाइट और गुसनीच गोटोक एजोडिरेक्टिन सेलानिन और मिलीफंटोल बिम्बिन बलुआत ये जीनिस मन रह से जोन कीड़ा कीड़ी मन के मार तो काम ने खूबे फायदा करे से। तो दादा दीदी मन तो असन लीम ले आमी दूसर फसल मन के बचाक लाई सकू और साग भाजी मन के बले बचाक लाई सकू। तो ए चोका जे लीम चो पाना के बले आमी काम ने अनु भती जोन धान फसल हो और दूसर फसल के बले आमी अच्छा ले अच्छा संगाक लाई सकू। असन लीम पाना के काम ने आंतर होलो ने सबले पहल पाना के टूटान भती छाए लगे खिंडिक सुखाऊ देत रहा और उन चो पाछे धान संगातर हो नाल पर दूसर दूसर जोन अरन बीती फसल मन होए से उन फसल मन के संगा तो काजे गोरला नहाले जोन ढाबा बलसोत उता खाले ओछा उन देत रहा और उन चो पाछे 6-10 इंच धान के रखा उन भाती समान बना देत रहा। फिर असन 6-10 इंच रखा लो पाछे फिर नीम पाना के ओछा उन देत रहा उन चो पाछे 6-10 इंच मोटा उता धान के रखाऊ देत रहे असन रकालो पाचे असनी ची करून करून धान भरते जात रहे और सपाय धान सरली बल्लो ने उंच पाचे फेर उपरे लीम पाना के ओछाऊ देत रहे तो असन करून भाती अमी धान नहाले दूसर फसल के बले खूबे दिन तक अच्छा ले अच्छा रोग संगाक लाए सकू और उतर कीड़ा कीड़ी और सूरी और कई किस्म से नुकसान करतो कीड़ी मन उतर नहीं धरे। तो दादा दीदी मन ये तो होली नीम पाना चो गोट मंतर अमी लीम चो फरले बले कहे किस्म चो रोग रही मन के गुजाक लाए सकू। तो भाई बहन मन खोजाकारी भाई मन सांगला से कि असन पाकलो बीती लीम फर के आम के जुहा तो राय और उनचो पाछे उनके अच्छा ले अच्छा संगान भाती उनचो पाउडर बनात रहे मंत्र गोटो गोट के ले कर तो रहा है कि लीम पाना जो लीम फर होए से उनके अच्छा ले पाकुक दे तो रहा है और नी पाकू पाकू बोले उनके टूटा तो नए और पाकलो भी थी उन मन टूटा सकले तो खूबे अच्छा रहे दे मंत्र उन मन टूटा तो बोल तो लीम पाना के मुश्किल होए से उन्हीं हिसाब ने आम के कहा है कि अच्छा पड़ुक दे तो रहा है और शुक्लो भी थी लीम पाना मन के हाथे बेच तो रहा है और बेच तो बेरा ये गोट के बल ले कर तो रहा है कि उनके बाड़े ने नी ओंडे आत रहा है बाड़े ने ओंडे आलो ने कहा है कि हुन दोवाई वकत जो काम निखिंडिक अच्छा काम नी करे से तो हुनिका जे पाकलो भी ती लीम पाना के अच्छा ले बेच तो राय और खिंडिक हुनके सुकाऊ देत राय और सुका तो बराबर आम के असन ठाने नी सुकात राय जोनता ने सिर मिठ होली नहाल फिर लोआ भी ती ठान होली असन ठान ने लीम पाना के नी सुकात राय असन सुकालो ने काय होए से उन मन चो जोन दोवाई वकत ने काम ये तो बीती जोन जीनिस मन आए हुन मन न सुन जाए से और हुन बीती जोन जिनिस मन नसलो ने कहा है कि दवाई वकत काम ने नी ऐसे तो ए गोट के लेख करुण भाती जो लीम चोपरा है अच्छा ले उनके सुखा तो राय और उन चोपाचे सुखली बल्लो ने उनके लगड़ुन भाती उनचो सोला के गुचाऊ देत राय असन सोला के गुच्छा लो पाचे हुन पाउडर बने से और असन पाउडर बना लो बीती बोले अच्छा ले उन तीन महीना चो भीतरे उनके तेल बल चेपाऊ सकोत और तेल नी चेपालो ने आम के उनके दवाई ची बल काम ने आंतराय बल्लो उनके खिंडी पीसुन देत रहे और पीसलो बीती की आमी कहे किसम चो दवाई बना तो काम ने आनुकलाई सकू असनीची पीसलो बीती लीम बीच के साग भाजी चो पला पका तो ठान ने बले देउन भरी हम कहे किसम चो कीड़ा कीड़ी मन के गुचाकुलाई सकू।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़चगोट, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

श्रोता सुमन सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को रूपाली पारे का स्नेहिल अभिवादन नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की फरमाइश पर छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से आप है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपिका कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। सुभाष वार्ड भाटापारा से आप है एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव और युवान ढाबेश यादव। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप है हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतक बीरक और मीका बीरक। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, किरण गीतू और निहारिका। जुरूर वुरूर महाराष्ट्र से आप है बाबा साहेब बड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कार्तिक और युवराज। आप सभी ने सुनना चाहा है अनुराधा पौड़वाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म है आपके साथ। तो लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर फिल्म आपके साथ का ये गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। साजन चले ससुराल, आइए अब इस फिल्म का गीत सुनते हैं। समीर की रचना है, नदीम श्रवण का संगीत है, स्वर दिया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। अनुरोध करता आप है शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू और साजदा। कवर कॉलोनी बड़वाह से आप है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी रॉय। दुबिहा नवोदा नेवादा गाजीपुर से आप है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से आप है अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। श्री रोगनेश्वर नगर से आप है पांगरा शिंदे, तहसील वसमत जिला हिंगोले महाराष्ट्र से टेलर रामचंद धोड़ीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू मयूरी सुरभि मंजूषा और उनके बहुत सारे साथी। अशोकनगर वसमत हिंगोली महाराष्ट्र से आप है दीपाली राजू ठेके, पार्वती सखाराम, रोहित सोनू और मोनू ठेके। झुमरी तलिया से आप है झकुली इंगोले, देव इंगोले, छोटू पेंटर रामचंद्र इंगोले और उनके बहुत सारे साथी। बेडी से आप है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज। भाटापारा से आप है बचकमाल मोतीलाल यादव, विनय ठाकुर। सोनाडीह से आप है सुब्रत चौधरी और बेबी कनीषा। महामायापारा ग्राम दुरचुरा से आप है फिरंता साहू, दुलौरीन साहू, कामेश्वरी और प्रीतम। ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। तो लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर फिल्म साजन चले ससुराल का ये गीत।

आदर्श नगर मालोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और नवीन शर्मा। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से आप हैं विनोद पुरी, वीपी, रंजू, अशोक, सुशील, वीके पुरी, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा, गगन, गुंजन, रमा, कुणाल और उनके बहुत सारे साथी। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं रामचंद माखीजा, काफिर, सविता, बेबी स्वाति, पूजा और उनके बहुत सारे साथी। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से आप हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। चांडूर बिस्वा तालुका नांदूरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से आप हैं नारायण भाव खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता, संजना, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और देवकी चौधरी। रंगीनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। मालेगांव से आप हैं दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और महराज जहां। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर फिल्म कहो ना प्यार है का गीत। स्वान कुमार का लिखा गीत है, संगीत राजेश रोशन का है, आवाज कुमार सानू का है।

किशोर कुमार की आवाज में आइए आप सुनते हैं फिल्म आराधना का गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन बनाई है एसडी बर्मन ने। अनुरोध करता आप है पुणे से पंकज बड़ोदे, आर्या प्रियंका, बीटी बड़ोदे और चंद्रप्रभा बड़ोदे। गौरीनगर इंदौर से आप है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। सपना संगीता रोड इंदौर से आप है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंके, साक्षी मनन और तानिया। दुरियापुर बावली महाराष्ट्र से आप है गजानन एले, नवदीप एले, शेरी वडनेर। अकोला से आप है अरुणा दामोदर। सुंदर पारा रोहासी से आप है डगेसर राम साहू, नूतन साहू, गौरी साहू और घनश्याम साहू। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आप है अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से आप है राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री। खुर्दी रोड मानपुर से आप है विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। धरसीवा से आप है छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से आप है छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाव यादव और उनके बहुत सारे साथी। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर फिल्म आराधना का ये गीत।

वैष्णव कॉलोनी सनावाद मध्य प्रदेश से आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। डोंगरगांव से जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका गजबीये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीये। गौतमनगर जिला नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। बागबाहरा भदरसी से आप हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन। यवतमाल विदर्भ से आप हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। ऊपरकोट बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी और उनके बहुत सारे साथी। औसा जिला लातूर हुन से आप हैं उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, फैजनबी शेख, इस्लामबी शेख, करिश्मा शेख और उनके बहुत सारे साथी। बक्सर बिहार से आप हैं शफरुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से आप हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। तेलीपारा बिलासपुर से आप हैं रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे हिना फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी जातू का किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख और उनके बहुत सारे साथी। गांव बिडूल उमरखेड़ से आप गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक पोपलवाड़, प्रियंका पोपलवाड़, लक्ष्मी और स्वरित। जमशेदपुर से आप हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से आप है श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। महादेव घाट अमलेश्वर से आप है डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर। जिला जालना सोमनाथ से आप है डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर, कार्तिक भूतेकर, अश्वनी वैष्णवी, हरसूल। औरंगाबाद से आप है गौरव लोखंडे, भाव सिंहपुर औरंगाबाद से ही मेघराज युवराज कुलते और उनके बहुत सारे साथी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से आप है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मोहित चौहान के स्वर में। इरशाद कामिल का गीत है, संगीत प्रीतम का है, फिल्म है जब वी मेट। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है डोंडी लहरा बालौद छत्तीसगढ़ से आप है देवशंकर तामुरिया, अजय देव राधिका, तुषार तामुरिया, डॉली बेबी पूजा और प्रभा देवी तामुरिया। कीकरमेटा बिलहारी पाटन दुर्ग से आप है संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा, गुरामी डोंडी लहरा बालौद से आप है पीयूष नेताम, जोहनीबाई नेताम, कोमल नेताम। जुनावनी दुर्ग से आप है सुरित रमेश साहू। ग्राम बन बघेरा से जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप है योगेश शर्मा, आशा शर्मा, नीरज नीलेश और अंजलि शर्मा। दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप है नंद कुमार यादव, दुलकहीन यादव, शंकर शमा, भोला किरण, द्रोण, अमन और उनके बहुत सारे साथी। दल्ली राजहरा से आप है सुरेश नागवंशी, ललित कुमार यादव, श्रीनिवास, सुनीत सेन। करमरथरा राजनांदगांव से आप है हरि यादव, वेद कुमार यादव, श्याम यादव, गट्टू साहू और दिलीप चिराम। डोंडी लहरा संबलपुर से ही आप है गौतम उर्वशा, डामिन लक्की, डोमन लाल कोठारी। अर्जुनदा बालौद से आप है दिनेश यादव, साधना यादव, तुव गेंदी मुंचुआ से आप है आयाश रावटे और रिंकू। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बचेली से आप है बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका सेन, पुष्पराज और उनके बहुत सारे साथी। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर फिल्म जब वी मेट का ये गीत।

बाजार पारा बेमित्रा से आप है भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा। गणेशपेट पाधड़ी महाराष्ट्र से आप है अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे। शेरकोट जिला बिजनौर से आप है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी और रोजी परवीन, बिट्टू और साजदा। जरूरपुर महाराष्ट्र से आप है बाबा साहेब बड़ोदे, मीनाक्षी और चंद्र प्रभा बड़ोदे। हाथकेरा भाटापारा से आप है पंचू यादव, दादू यादव। बावली से आप है कमलेश साहू, हरिंद्र साहू, सुशील बेल सुप्रिया। बोरखेड़ा विप्रामल जिला उज्जैन से आप है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहरा, दीक्षा कुश मुणत। आप सभी ने सुनना चाहा है राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का गाया गीत, रचना देव कोहली की है, फिल्म है मैंने प्यार किया। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम श्रोता सुमन से रूपाली पारे को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार अंग्रेजी में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। मृत्यु

0: आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी सुधी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जायेगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
2: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
3: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कला और कलाकार।
5: दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा।

0: जुहार दादा दीदी मन, जुहार। हाँ तो दादा दीदी मन, रोजे दिन आसन आमी हुनी समिया ने नंगत गोट बात के धरुन बाती अमरू से अले तेबे मैं मूर करे से एची संगे कला और कलाकार सुनतो सब पाए गांव करिया दादा दीदी सियान सजन और संग जोहरिया मन के मैं सेवती करे से जुहार। हाँ तो दादा दीदी मन, जुहार भेट तो होलू मानतर आमी रोजे दिन आसन काई ना काई नंगत गोट बात मन के करू से हुसनी आजी आमी रंगमंचो सामाजिक भूमिकाचो बारे ने गोट बात करूं दे। रंगमंच कलाचो गोटोक महत्वपूर्ण जरिया आए, ये सोजे मनोरंजन चो साधन नहीं आए बल्कि समाज के जागरूक करतो और सही बार दखातो चो प्रभावशाली जरिया बले आए। रंगमंचो जरिया ले कलाकार मन अभिनय संवाद और प्रस्तुति करून समाज चो समस्या भावना और विचार मन के लोग मन लगे अमरासोत। असन ने रंगमंच समाज काजे जागरूकता शिक्षा और परिवर्तन आंतो काजे अहम भूमिका निभाए से। रंगमंच कायाय मंच थाने कलाकार मन अभिनय संवाद गीत और भाव भंगिमा चो जरिया ले कई कहानी विचार के प्रस्तुत कर तोर रंगमंच आए। ए थाने साहित्य गीत अभिनय और कलाचो सुंदर संगम आसे। रंगमंचो सामाजिक भूमिका खूबी आए, सबले पहल समाज के जागरूक कर तोर रंगमंच समाज चो परेशानी के लोग मंचो पूरे आने से जसन की शिक्षा चो महत्व के महिला सशक्तिकरण साफ सफाई पर्यावरण संरक्षण घरेलू हिंसा और कई विषय मन के नाटक चो जरिया रे लोग मन के जागरूक करुआत। सामाजिक कुरीति चो विरोध करतोर रंगमंच समाज ने जोन बुराई आसे हुंचो खिलाफ आवाज उठाए से जसन की दहेज प्रथा बाल विवाह भेदभाव छुआछूत नशाखोरी और कई बुराई मन के नाटक चो जरिया ले कुरीति चो काय दुष्परिणाम मिरे से हुनके दखाउआत। रंगमंच शिक्षा चो जरिया आए, रंगमंच मनोरंजन चो संगे शिक्षा बले दे से कठिन विषय मन के सरल और सही ढंग ले समझाउआत। सामाजिक परिवर्तन आने से जब लोग मन नाटक चो जरिया ले कोनी परेशानी के समझो तो हुन मंचो विचार बदले से जेचो ले समाज ने सकारात्मक बदलाव ऐसे संस्कृति और परंपरा चो संरक्षण होए से रंगमंच लोक कला लोक नाचा और पारंपरिक कहानी के जीवन संगाए से ये आमचो सांस्कृतिक विरासत के एतो पीढ़ी लगे अमरातो चो काम करे से। हाँ तो दादी दीदी मन, असनी गुड बात होते रह दे असनी जहाला से ये जहाला के सुनो।
1: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और सामान किन मोलवेंट कम मत्ता जानवर किन इलाज तगवें राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
0: हाँ तो दादा दीदी मन कितरो नंगत गोट मन के सुन लू और हमें गोट बात करते रहो रंगमंचो बारे ने। भावना के अभिव्यक्त करे से रंगमंच माने चो भावना विचार संघर्ष और अनुभव ये सपाए के व्यक्त करे से लोग मन के सोचतो और महसूस करतो का जी प्रेरित करे से एकता और सहयोग चो भावना रहे से रंगमंच सामूहिक काम आए ए थाने कई कलाकार मन मिलून करी काम करुआत जेचो ले एक दूसरा संगे सहयोग और एकता चो भावना विकसित होए से। नुक्कड़ नाटक चो भूमिका समाज के जागरूक करतो काजे होए से नुक्कड़ नाटक चो जरिया ले सीधा लोग मंचो मंजी जाऊन करी संदेश देतोर परेशानी चो बारे ने चर्चा करतोर जागरूक बनातो काम होए से। समाज ने रंगमंचो काय प्रभाव पड़े से रंगमंच हुन मंच आए जेचो जरिया ले सीधा लोगमन संगे जुड़ूक होए से लोगमन ले जुड़ून करी हुन मंचो सोच बदले से सत और गलत चो पहचान कर सोत सामाजिक जिम्मेदारी के समझ सोत। हाँ तो दादा दीदी मन बोल तो गोटे आए कि रंगमंच समाज चो दर्पण आए ये मनोरंजन चो संगे संगे समाज के शिक्षा जागरूकता और प्रेरणा दे से समाज ने सकारात्मक अंतो काजे रंगमंचो अहम भूमिका आसे रंगमंच समाज चो दर्पण आए जोन सत तखाउन करी बदलाव चो प्रेरणा दे से। हाँ तो दादा दीदी मन कितरो नंगत गोट मन के कर लू और नंगत गोट मन सुन लो ने मन हरिक लगवाए और मन हरिक खुलो ने गीत गोविंद सुनुक भवाए तो असनी गीत आसे ये गीत कुरिया मनात शिवराम नाग और हुन मंचो संगवारी अलिते भी ये गीत के सुनू।

हाँ तो दादा दीदी मन काय रसरसिया गीत के सुन लू और नंगत गोट मन के बले सुन लू मांतर अमी रोजी दिनासन और नंगत गोट मन के करूं से जसन की तुम्ही जान सास की आमचो कार्यक्रम चो नाम है कला और कलाकार ए थाने अमी कोनी न कोनी कलाकार मंचो गोट बात मन के करूं से हुसनी आजी अमी आजी चो कलाकार ने सैयद हैदर रजा चो बारे ने गोट बात करूं दे। सैयद हैदर रजा भारत चो महान आधुनिक चित्रकार मन ने गोटोक रला इमन विशेष रूप ले आपलो बिंदु शैली काजे पूरा विश्व भर ने प्रसिद्ध आसोत इमन चो पूरा नाव सैयद हैदर रजा रहे।

0: एमन जो जन्म 22 फरवरी 1922 के मध्य प्रदेश ने हो रहे। एमन भारतीय आधुनिक कला के नुआ पहचान दिलाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने भारत जो नाव के रोशन करला। एमन के पीला बेरा लेची चित्रकारी ने रुचि रहे, मूर्चो शिक्षा भारत ने धरला और आगे कलाचो उच्च शिक्षा काजे मुंबई गेला। पाछे एमन फ्रांस गेला, जोन थाने एमन आपलो कला के और नंगत करला। बिंदु शैली काया है, बिंदु शैली सैयद रजा जो सबले प्रसिद्ध चित्रकला शैली आए। बिंदु जो माने आए कि गोटोक बिंदु केंद्र आए। सैयद रजा जो अनुसार बिंदु जुग ऊर्जा और जीवनाचो प्रतीक आए। एमन आपलो पेंटिंग ने बिंदु के केंद्र बनाउन करी रंग और आकृति जो जरिया ले गहरा आध्यात्मिक अर्थ प्रस्तुत करला। एमन जो चित्रकला ने खूबे विशेषता आए। बिंदु जो प्रयोग करते रहो, एमन आपलो पेंटिंग ने गोलाकार बिंदु मुख्य रूप ले दखा दीवा, ये ऊर्जा शांति और ब्रह्मांड जो प्रतीक आए। हाँ तो दादा दीदी मन असनी गोट बात होते रह दे, असनी जहला से ये जहला के सुनु।
1: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से, बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से, नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेंतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: हाँ तो दादा दीदी मन नंगत गुट मन के सुन लू और आमी गुट बात करते रहूं सैयद रजा चो बारे ने। चमकीला रंग के काम ने आनते रहो, एमन लाल पीला नीला करिया जसन गहरा और आकर्षक रंग मन के उपयोग करते रहोत। ये रंग मन हुनमंचो पेंटिंग के जीवंत और प्रभावशाली बनाते रहे। एमन चो कला भारतीय संस्कृति ले जुड़ली से सैयद रजा चो कला ने भारतीय दर्शन अध्यात्म और प्रकृति चो झलक दखुक मिरुआए। अमूर्त कला शैली रहे एमन चो पेंटिंग ने वास्तविक चीज मंचो बजाय विचार और भावना दखुक मिरुआए। एची काजे आधुनिक अमूर्त कला चो महान कलाकार मानुआत। कला जगत ने एमन चो योगदान खूबे अहम आए। सैयद रजा भारतीय कला के अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाला। एमन चो पेंटिंग विश्व भर चो प्रदर्शनी मन ने दखा दिली। एमन भारतीय कला के नुआ दिशा दिला। सैयद रजा के हुनमंचो योगदान काजे कई सम्मान मिरली, जसन की पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण जसन सम्मान मिरली। सैयद रजा जुवान कलाकार मन के प्रोत्साहित करतो काजे रजा फाउंडेशन संस्था चो स्थापना करला। सैयद हैदर रजा भारतीय आधुनिक कला चो महान चित्रकार रला। एमन चो बिंदु शैली कला जगत काजे नुआ सोच और आध्यात्मिक गहराई दिला। एमन चो कला आजी बले कलाकार मन काजे प्रेरणा चो स्रोत आसे। सैयद हैदर रजा बिंदु शैली चो जरिया ले भारतीय आधुनिक कला के विश्व स्तर ने पहचान दिलाला। हाँ तो दादा दीदी मन कितरो नंगत गोट मन के सुन लू और नंगत गोट मन सुन लो ने हरी लागुआ और मन हरी खोलो ने गीत गोविंद सुनुक भावुआ। तो दादा दीदी मन असनी गीत आसे ये गीत कुरिया मनात बलवीर सिंह कक्ष और हुन मंचो संगवारी अलते भी ये गीत के सुनू।

हाँ तो दादा दीदी मन काय नंगत गीत रली गीत गोविंद असन नाय की सुनते रलो ने सुनते चिरासन लागवाय। तो मोचो मोडरा ने असनी और गीता से ये गीत कुरिया मना दिलीप कुमार पांडे और हुन मंचो संगवारी अलेते भी ये गीत के सुनू।

0: हाँ तो दादा दीदी मन काय रसरसिया गीत के सुन लू, ज्ञान ध्यान और गीत गोविंद के सुनते रलो ने नंगत लागे से, और ये सपाय के सुनते रलो ने समयाचो पता बले नी चले, मानत समयाचो मोल खूबे आए, समया ने गेलो ने समया ले एवं हुआ। तो दादा दीदी मन फिर कोनी दिने हुनी समया ने भेट गाउट हो दे, तो जातो पूरे मौके विदा दिया, एची संगे कला और कलाकार सुनतो सब पाए गांव करिया दादा दीदी सियान सजन और संग जोहरिया मन के मैं सेवती करें से जुहार।
1: दादा दा, दादा दा, दादा दा, दादा दा।

अभी आप सुन रहे थे कला और कलाकार। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। मीडियम वेव पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 4 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 4 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है, क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई NGO से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
2: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा न जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखी हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लायंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं, और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड STP प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
2: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लीकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: मैं पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी, एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
2: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है, और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
0: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं, और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोस्टिंग सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मेरे प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबेस में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
3: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
3: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
0: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है। और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आमी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आमी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
3: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है।
3: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं।
3: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं।
3: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
0: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल करके उसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स लिविंग एरियाज कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है जैसे टेबल चेयर बेंच कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है जो दर्शाती है कि आर्मी न केवल रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है, अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
3: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: और सर क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं इसके बारे में अगर आप बता पाए।
3: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: सर हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए।
3: जी ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely, 80 kg वेस्ट, आप सोचिए 80 kg वेस्ट कितना ज्यादा होता है, उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना कितनी अहम चीज है, ये कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
3: इसमें, डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं जिसमें आप टेबल कबर्ड तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच सर।

0: इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाया।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सलेंट इनिशिएटिव।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर, स्वागत है शो में। प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
3: जय हिंद, आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
2: वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
3: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
0: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
3: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई नीट सीरियस और एसएसबी सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो अफसर जवान वो अपने बच्चों के खिलौने किताबें ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
0: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
4: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें चार फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयड होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
4: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
0: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। अपना

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

0: नमस्कार।
1: 96.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात 10 बजे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आज शाम 5:05 पर समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में आप सुन सकेंगे। आज शाम 5:10 पर आप सुन सकेंगे युवा श्रोताओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:35 में आप सुनेंगे हल्बी बोली में लोकगीत, कलाकार होंगे मेघनाथ पटनायक और साथी। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण किया जाएगा आज शाम 7 बजे और शाम 7:20 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाड़ी। कार्यक्रम डांडा माली का प्रसारण किया जाएगा आज रात 8 बजे और 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम पिलामन काजे गोट, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर एनी बेसेंट के विषय में। प्रस्तुति होगी पूर्णिमा सरोज की। आज रात 9:15 में सुनिएगा ग्राम पंचायत की विकास गाथा हल्बी बोली में। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कक्ष। आज रात 9:30 में कार्यक्रम रैनी में आप सुनेंगे लोकगीत, कलाकार होंगे महंगू राम और साथी। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे कल सुबह 6:05 पर और 6:20 पर आप सुनेंगे चिंतन। प्रस्तुति होगी शिव सागर त्रिपाठी की। कल सुबह 6:25 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस का गायन, स्वर लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। 6:35 पर आप सुनिएगा बेड़ा खाड़ा चुगोट, जिसका पुनः प्रसारण दोपहर 1:05 पर किया जाएगा। कल सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे हुलहुली कार्यक्रम में पहतिया पाड़, वादक कलाकार होंगे सुनारू राम और साथी। कल सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे कल सुबह 9 बजे और 9:30 में सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें फिल्म होगी ममसा। कल सुबह 10 बजे गुलशन कार्यक्रम आप सुनेंगे और 10:30 में सुनिएगा गुड़दुम कार्यक्रम में हल्बी बोली में। एक ही कलाकार आप सुन सकेंगे, जो केंद्रित होगा फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त पर। कल सुबह 11 बजे और 11:30 में आप सुनिएगा कार्यक्रम रुसरुसा, जिसमें आप सुनेंगे चंद्रकांता राजा और गायिका होंगी शांति और साथी। कल दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मोचू माटी और दोपहर 12:30 पर आप सुनिएगा ग्रामीण महिलाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर दुबार। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम कला और कलाकार का समय होगा कल दोपहर 2:30 का। कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। कल शाम 5:10 पर आप सुनिएगा युवा साथियों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:35 पर आप सुनिएगा हल्बी लोकगीत और शाम 7 बजे सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर और शाम 7:20 पर सुनिएगा ग्रामीण साथियों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम आमचो गांव। कल रात 8 बजे सुनिएगा घलर कार्यक्रम में हल्बी लोकगीत। कल रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम पिलामन काजे गोट, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में। प्रस्तुति होगी भरत कुमार गंगादित्य की। कल रात 9:15 पर सुनिएगा नंजर कार्यक्रम भेंट वार्ता। खेल पत्रिका का समय होगा कल रात 9:30 पर और रात 10 बजे आप सुनेंगे फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का लोकरस। श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में।
0: सफाई लोग मन के मैं माधुरी यादव करे से जुहार ए समय चो गोठ ने आज आमी गोठ करवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो नेतृत्व ने केंद्र चो एनडीए सरकार चो 12 बरस पूरा हो तो गोठ के गेलो 26 मई के एनडीए सरकार 12 बरस पूरा कर ली से 26 मई 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद चो शपथ धरू रहला। ए 12 बरस ने प्रधानमंत्री देश हित काजे कएक महत्वपूर्ण निर्णय धरला जेथा जम्मू कश्मीर ले अनुच्छेद 370 के गुचातो वस्तु और सेवा कर जीएसटी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम अग्निपथ योजना अयोध्या ने राम मंदिर निर्माण नागरिकता संशोधन कानून नुआ शिक्षा नीति संगे कई जन कल्याणकारी योजना चो लागू करतो एनडीए सरकार चो 12 बरस पूरा होलो ने भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ संगे देश भर ने 5-21 जून तक 12 साल विश्वास विकास अरु जन कल्याण चो थीम उपरे अभियान चलाए दे। ये अभियान चो मूरगोट 12 बरस ने सरकार चो करलो काम के लोग मन लगले अमरा तो राय ये गोट के पार्टी कार्यकर्ता मन घर घर जाऊन सांग दे। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय केंद्र चो एनडीए सरकार चो 12 बरस पूरा होतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई दिला से मुख्यमंत्री बल्ला से कि श्री मोदी चो दूरदर्शी निर्णायक अरु जन केंद्रित नेतृत्व ले आज भारत आत्मविश्वास अरु विकास चो नुआ युग ने आमरली से श्री मोदी विकास चो लाभ के समाज चो आखरी छोर चो लोग मन लगले अमरातो कोशित करे सुत। मुख्यमंत्री बल्ला की छत्तीसगढ़ का जे श्री मोदी चो नेतृत्व खास आसे कैक बरस ले नक्सल हिंसा ले प्रभावित बस्तर अरु रान बन बीती क्षेत्र ने आज विकास विश्वास अरु जन कल्याण चो नुआ धारा दखा दैसे सड़क मोबाइल कनेक्टिविटी स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पानी बैंक चो सुविधा ले लोग मन चो जीवन बदल ली से संघ ने प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना ले लोग मन ने आत्मविश्वास मुख्यमंत्री बल्ला की श्री मोदी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अरु सबका प्रयास चो मंत्र के सोझे नारा रहुक नी दिला बल्कि उनके नीति चो आधार बनाला। मुख्यमंत्री बल्ला की प्रधानमंत्री श्री मोदी चो पूरे होन रलो ने देश सोझे आर्थिक रूप ले मजबूत नी होली से बल्कि सांस्कृतिक आत्मगौरव राष्ट्रीय एकता अरु जन भागीदारी चो भावना के बोले नुआ ऊर्जा दय से मुख्यमंत्री बल्ला की छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो मार्गदर्शन ने जन कल्याण सुशासन अरु अंत्योदय चो संकल्प के आगे बढ़ातो काजे पक्की विचार कर ली से राज्य सरकार ए विचार करे से कि केंद्र सरकार चो योजना चो लाभ प्रदेश चो आखरी माने तक अमरो अरु विकास चो लाभ समाज चो हर वर्ग के मिरो। श्री साहेब बल्ला की प्रधानमंत्री श्री मोदी चो नेतृत्व ने भारत विकसित राष्ट्र बनतो काजे संकल्प धरून आगे बढ़े दे।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: अभी आप सुन रहे थे समसामयिकी विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार, जिसका प्रसारण हम हल्बी बोली में कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में, जहां आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मैं यानी कि हर्ष ठाकुर और
1: मैं आपकी कंपेयर साथी रिया प्रियांशी नाल।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार
1: हर्ष। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लाखों युवाओं के दिल की आवाज है, छोटे शहरों के युवाओं के बड़े सपने।
0: रिया, कुछ साल पहले तक ऐसा माना जाता था कि बड़े सपने पूरे करने के लिए आपको बड़े शहरों में होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अब छोटे शहरों के युवा भी बड़े मंचों तक पहुंच रहे हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।
0: आज इंटरनेट ने दूरियों को कम कर दिया है। पहले जानकारी पाने के लिए बड़े शहर जाना पड़ता था और आज वही जानकारी मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है।
1: और यही कारण है कि सब छोटे शहरों के युवाओं के सपने पहले से कहीं बड़े हो गए हैं। और कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो कोई उद्यमी और कोई कलाकार।
0: हाँ, एक समय था जब छोटे शहर का युवा कहता था बस नौकरी मिल जाए,
1: और आज कहता है स्टार्टअप शुरू करना है, ऐप बनाना है, दुनिया बदलना है।
0: हाँ, लेकिन सपनों की इस उड़ान के साथ चुनौतियाँ भी बहुत है रिया।
1: बिल्कुल, कई बार संसाधनों की कमी होती है, अच्छे कोचिंग नहीं मिलती, मार्गदर्शन का अभाव होता है और कभी कभी आत्मविश्वास भी डगमगा जाती है।
0: हाँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि संघर्ष से निकली हर सफलता सबसे मजबूत होती है रिया।
1: सही कहा तुमने हर्ष, छोटे शहर का युवा अवसर सीमित संसाधनों में बड़ी मेहनत करना सीखता है और यही उसकी ताकत बन जाती है।
0: हाँ, छोटा शहर है तो क्या हुआ, सपनों का आसमान बड़ा है, हौसला की उड़ान देखो, हर मंजिल का रास्ता खड़ा है।
1: वाह, क्या खूब कहा तुमने हर्ष। और आज हम ऐसी कई उदाहरण देखते हैं जहां छोटे शहरों के युवाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।
0: हाँ, सफलता की सबसे अच्छी बात यह है कि उसे आपके शहर का नाम नहीं, आपकी मेहनत का नाम याद रहना चाहिए।
1: हाँ हर्ष, एक और बदलाव आया है।
0: क्या है ओरिया?
1: पहले युवा नौकरी खोजते थे, आज कई युवा नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, उद्यमिता का बड़ा रुझान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
1: और सरकार की विभिन्न योजनाएं भी युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप की ओर प्रेरित कर रही है।
0: हाँ, हालांकि एक चुनौती और भी है।
1: और वो क्या है?
0: तुलना।
1: हाँ, सोशल मीडिया के दौर में लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं।
0: जबकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग होती है रिया।
1: सफलता का कोई स्टार्टअप नहीं होता।
0: हाँ, और छोटा शहरों के युवाओं ने यह बात शायद सबसे अच्छे से समझ लिया है कि सीखने का तरीका जो होता है वो बहुत आसान होता है। छोटे शहर हैं भले, लेकिन वहाँ पे भी उपलब्ध है छोटे छोटे सामग्रियों के द्वारा भी। छोटे शहर से इंसान निकल के बड़े शहरों तक पहुँच सकता है, बस उसके पास दिमाग होना चाहिए।
1: वैसे हर्ष, हाँ, छोटे शहरों के युवाओं की एक खासियत मैंने देखी है।
0: वो क्या है?
1: संसाधन कम होते हैं लेकिन जुगाड़ और जुनून भरपूर होता है।
0: बिल्कुल, और कई बार यही जुगाड़ नवाचार बन जाता है।
1: मुझे लगता है कि युवाओं को अपने सपने के साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए,
0: क्योंकि बड़ा सफलता अक्सर समय मांगता है।
1: क्योंकि कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है।
0: बहुत सुंदर रिया, मैंने तुम्हारी तारीफ की। थैंक यू, कौन बोलेगा?
1: थैंक यू।
0: और दोस्तों, अगर आप किसी छोटे शहर या गांव से हैं, तो कभी यह मत सोचिए कि आपके सपने छोटे होने चाहिए,
1: क्योंकि सपनों का आकार आपके शहर से नहीं, आपकी सोच से तय होता है।
0: तो दोस्तों, अपने सपनों को सजो कर रखिए,
1: मेहनत करते रहिए,
0: असफलता से सीखिए
1: और अपने शहर पर गर्व कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। अब बिना देरी किए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं आज के कार्यक्रम में क्या है खास। क्यों हर्ष?
0: हाँ बिल्कुल रिया। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नहीं ढेर सारे कार्यक्रम, और वह कार्यक्रम है आज के फनकार, जिसमें हम सुनेंगे हमारे आज के फनकार के गीत और साथ ही दोस्तों सुनेंगे खेल से जुड़े ताजा खबरें।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम आज कुछ बात करेंगे ज्ञान पर भी और सुनेंगे कार्यक्रम वार्ता में बस्तर में पर्यटन और रोजगार विषय पर, जिसकी वार्ताकार होंगी दिव्या बघेल।
0: वैसे रिया,
1: हाँ,
0: तुमने दोस्तों को बताया नहीं, आज के फनकार में कौन है खास?
1: हाँ हर्ष, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस सितारे की जिसने अपनी आवाज से अलग पहचान बनाई अपनी एक्टिंग, सिंगिंग और यूनिक फिल्मों से भी।
0: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आयुष्मान खुराना की। और दोस्तों इनको कौन नहीं जानता, आयुष्मान सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं, एक सोलफुल सिंगर भी हैं।
1: हाँ हर्ष, बहुत कम लोग जानते हैं कि आयुष्मान खुराना का असली नाम निशांत खुराना था, बाद में उनका नाम आयुष्मान खुराना रखा गया।
0: हाँ रिया, ये तो मुझे भी नहीं पता था। और एक और खास बात है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से नहीं बल्कि रेडियो जॉकी और टीवी होस्ट के रूप में किया था।
1: बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद उन्होंने साल 2000 में रियलिटी शो एमटीवी रोडीज जीता था और वहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई।
0: हाँ दोस्तों, उनका जन्म चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 में हुआ था। स्कूलिंग के लिए उन्होंने चंडीगढ़ के सेंट जॉन स्कूल में भेजा गया
1: और अपनी हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज गए, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री भी हासिल की। इसलिए दोस्तों आयुष्मान खुराना का जिक्र फिल्मी गलियारों के उन कलाकारों में किया जाता है जो इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं।
0: तो दोस्तों सुनते हैं हमारे आज के फनकार आयुष्मान खुराना के फिल्म बरेली की बर्फी से यह प्यारा गीत, जिसे गाया भी है आयुष्मान खुराना ने ही। और इस गीत के जो लिखा हुआ जिसने है इस गीत को, उनका नाम है आर को, और इसे ही संगीत से सजा है आर को जी ने।
1: आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: रिया,
1: हाँ
0: क्या तुम्हें पता है कि आयुष्मान खुराना का एक गाना जो उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में गाते आ रहे हैं, फिर उन्होंने अपने दोस्त रोचक कोहली के साथ मिलकर इसे बनाया था, वो कौन सा गाना है पता है?
1: अच्छा हर्ष, कहीं तुम उस गाने की बात तो नहीं कर रहे हो जब आयुष्मान को उनकी पहली फिल्म विक्की डोनर मिली थी?
0: हाँ रिया, बिल्कुल सही समझा तुमने। दोस्तों, ये गाना उन्होंने अपने फिल्म की टीम को सुनाया और सबको यह गाना इतना पसंद आया कि इसे फिल्म में शामिल कर लिया।
1: दोस्तों सुनते हैं अगला गीत, आयुष्मान खुराना की आवाज में एक खूबसूरत गीत और संगीत से सजाया है इस गीत को रोचक कोहली ने और गीत को लिखा भी है आयुष्मान खुराना ने।
0: जी हाँ दोस्तों, सुनते हैं ये गीत फिल्म विकी डोनर से।

0: जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, गाने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा और हम आपको आयुष्मान खुराना के बारे में और उनके गाने सुनवाते रहें। क्यों ना कुछ पल के लिए कार्यक्रम आज के फनकार को देते हैं विराम और सुनते हैं वार्ता बस्तर में पर्यटन और रोजगार विषय पर दिव्या बघेल से।
4: कार साथियों, मैं हूं दिव्या बघेल और आज के चर्चे का विषय है बस्तर में पर्यटन और रोजगार। छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल अपनी अद्वितीय संस्कृति, घने जंगलों, जलप्रपातों और समृद्ध जनजाति विरासत के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में बस्तर में पर्यटन एक बड़े रोजगार और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से उभर रहा है। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित भारत का सबसे चौड़े जलप्रपातों में से एक है। यह इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और अपनी घोड़े की नाल जैसी आकृति के कारण इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। इस जलप्रपात की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे ऊंचाई लगभग 90 फीट है। वर्षा ऋतु में इसका दृश्य अत्यंत विशाल और आकर्षक दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर होता है। रात में रंगीन रोशनी से जलप्रपात और भी आकर्षक लगता है। अब हम जानते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और अपनी सीढ़ीनुमा जलधारा और प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यह जलप्रपात लगभग 300 फीट की ऊंचाई से कई स्तरों में गिरता है। चारों ओर घने जंगल और पहाड़ इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ जंगलों के बीच पैदल यात्रा, फोटोग्राफी और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लिया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह अपनी हरियाली, वन्य जीवों, जैव विविधता और प्राकृतिक गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को और प्रकृति प्रेमियों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। यह उद्यान लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ घने सालवन, पहाड़ियाँ और अनेक दुर्लभ वनस्पतियाँ पाई जाती है। तेंदुआ, हिरण, जंगली भैंसा, पक्षियों की कई प्रजातियाँ और वन्य जीव यहाँ देखे जा सकते हैं और यहाँ प्रसिद्ध गुफाएं भी देखने को मिलते हैं, जैसे कुटुम्बसर गुफा। यह अपनी प्राकृतिक संरचना और अंधेरी सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश गुफा चूना पत्थर की सुंदर आकृतियों के लिए जानी जाती है। साथियों, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय उत्सव के बारे में, जो है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। यह जगदलपुर में बड़े उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा उत्सव माना जाता है, जो 75 दिनों तक चलता है। यह उत्सव देवी दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित है। बस्तर दशहरा का संबंध राम और रावण के युद्ध से नहीं है, बल्कि स्थानीय जनजातीय परंपराओं और देवी पूजा से है। विशाल लकड़ी के रथ को हजारों लोग रस्सियों से खींचते हैं, जो इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। इसमें बस्तर की विभिन्न जनजातियां अपनी सांस्कृतिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत करती हैं। बस्तर दशहरा जनजातीय संस्कृति, लोक कला और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह उत्सव बस्तर की पारंपरिक पहचान को देश और विदेश में प्रसिद्ध बनाता है। बस्तर दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उत्सव है। देवी दंतेश्वरी की आराधना, विशाल रथ यात्रा और लोक कलाओं की प्रस्तुति इसे विश्व की प्रसिद्ध उत्सव दर्शाती है। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय युवाओं को कई क्षेत्रों में काम मिल रहा है, जैसे होटल और रिसोर्ट व्यवसाय। होटल, लॉज और रिसोर्ट में मैनेजर, कुक, वेटर और स्टाफ की जरूरत पड़ती है। स्थानीय युवक पर्यटकों को घुमाने, टैक्सी और वाहन सेवा से आय अर्जित कर रहे हैं। बस्तर की बेल मेटल कला, बांस शिल्प और जनजातीय हस्तकला की बिक्री बढ़ रही है। पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कलाकारों को रोजगार मिलता है। ट्रेकिंग, कैंपिंग और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के कारण स्थानीय लोगों को गाइड सेवा, वाहन और परिवहन, भोजन एवं होटल व्यवसाय, हस्तशिल्प बिक्री जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, यहाँ घूमने का उपयुक्त समय जुलाई से फरवरी का समय सबसे अच्छा माना जाता है। वर्षा ऋतु में जलप्रपात का दृश्य अत्यंत मनमोहक दिखाई पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन सुविधाओं, सड़क और निवेश परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इससे भविष्य में रोजगार के और अवसर बढ़ने की संभावना है और साथ ही कई रोजगार मेले और निवेश परियोजनाएं भी शुरू की गई है। धन्यवाद
5: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जिसका विषय था बस्तर में पर्यटन और रोजगार, जिसकी वार्ताकार थी दिव्या बघेल।
3: दोस्तों, आयुष्मान खुराना ने अपने टैलेंट, मेहनत और अलग सोच से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई है ना हर्ष?
5: बिल्कुल रिया, इनके निभाए गए किरदार को भूल पाना काफी मुश्किल है। फिर चाहे वो फिल्म में राम परमार हो, मोहित चड्ढा हो, प्रेम प्रकाश तिवारी की भूमिका हो या नकुल कौशिक का किरदार हो।
3: सही कहा तुमने, हर फिल्म में आयुष्मान ने अपने किरदार से लोगों के दिलों में जगह बनाई है।
5: जी हाँ दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान से, ये गीत जिसे गाया है आयुष्मान खुराना ने।
3: दोस्तों सुनते हैं ये गीत जिसे लिखा है वायुम ने और संगीत से पिरोया है तनिष्क और वायुम ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: दोस्तों, इन्हीं गानों के साथ साथ चर्चा करते हैं कुछ खेल से जुड़ी खबरों के बारे में।

0: दोस्तों, खेल से जुड़ी पहली खबर है क्रिकेट पर। इंग्लैंड महिला टीम ने भारत को तीसरे और निर्णायक T20 मैच में 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली। भारत इस वर्ष के अंत में न्यूजीलैंड दौर पर जाएगा, जहां 2 टेस्ट, 5 ODI और 5 T20 मैच खेला जाएगा।
1: IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता। फीफा ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के भारत प्रसारण अधिकारी के लिए Neutrons.com के साथ समझौता किया है। अब विश्व कप भारत में जी नेटवर्क पर प्रसारित होगा।
0: दोस्तों, अगली खबर है टेनिस पर। मार्टा कोस्ट्यूक ने फ्रेंच ओपन में विश्व नंबर 7 एलिना स्टिविलोना को हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल खेलना सुनिश्चित किया। आर्यन संभालिंका फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
1: भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सैत्विक साराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने हाल ही में सिंगापुर ओपन खिताब जीतकर शानदार वापसी की है।
0: दोस्तों, आज के खेल समाचार में बस इतना ही। आशा करते हैं बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई होगी।

हैं उनकी एक और फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का गीत, जिसे सुरों से सजाया है अरिजीत सिंह ने और इसे लिखा है प्रिया सरैया ने, संगीत दिया है सचिन और जिगर ने।

0: वैसे रिया, अगर गाने के साथ साथ अगर हमें थोड़ी ज्ञान भी मिल जाए तो क्यों ना बात करते हैं कुछ ज्ञान की बातों पर।
1: हाँ बिल्कुल हर्ष, इससे थोड़ा दिमाग की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना?
0: हाँ, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में अगर एक ही धातु को दो टुकड़ों में आपस में जोड़ दिया जाए तो वे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। इसे कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पृथ्वी की तरह हवा और ऑक्सीजन है जो धातुओं पर सुरक्षा परत बना सके।
1: अब अंतरिक्ष में सिर्फ रिसर्च नहीं, खेती भी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS पर वैज्ञानिकों ने मिट्टी के बिना सिर्फ हवा और पानी की मदद से छोटा टमाटर और लाल मिर्च उगाने में सफलता हासिल की है।
0: दुनिया के सबसे लंबी दो लेन सुरंग हमारे भारत में है। अरुणाचल प्रदेश में बनी सेल टनल समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो बिना सीमा के पास हर मौसम में कनेक्टिविटी देती है।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत भी पीछे नहीं है। ओला कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी AI मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम कृत्रिम है। यह कई भारतीय भाषाओं को आसानी से समझ और बोल सकता है।
0: कनाडा की एक खदान में जमीन से करीब 2 किलोमीटर नीचे दुनिया का सबसे पुराना पानी खोजा गया है।

0: वैज्ञानिक के मुताबिक यह पानी लगभग 1.5 अरब साल पुराना है।
1: दोस्तों आज के सामान्य ज्ञान की बातों पर इतना ही। वैसे हर्ष, हमने बहुत सी बातें आज आयुष्मान खुराना की और उनके बारे में जानकर लगा कि वो सिर्फ एक अभिनेता एक्टर नहीं बल्कि इंस्पिरेशन है।
0: हाँ रिया, बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर उनकी फिल्मों में समाज के लिए मैसेज होता ही है।
1: हाँ, और उन्हें फिल्म अंधाधुन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है।
0: इसी के साथ दोस्तों आयुष्मान खुराना की बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला है।
1: दोस्तों सुनते हैं ये गीत आयुष्मान खुराना की शानदार फिल्म अंधाधुन से, जिसे स्वर दिया है और संगीतबद्ध किया है अमित त्रिवेदी ने, और इसके गीतकार हैं जयदीप सहानी।
0: दोस्तों जिस तरह उनकी मुस्कान में सादगी है, अभी इसी तरह गीत की धुन भी दिल को बड़ी आसानी से जीता जा सकता है उनकी आवाज से। आइए सुनते हैं उनकी ये मजेदार गीत।

0: भूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: दोस्तों, अपनी सादगी, अलग सोच और दिल को छू लेने वाली आवाज से आयुष्मान खुराना ने हर दिल में एक खास जगह बनाई है ना हर्ष?
4: जी हाँ दोस्तों, उनके गीत सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगते बल्कि महसूस होते हैं। सुनते हैं अगला गीत फिल्म नौटंकी साला से, जिसके गायक हैं आयुष्मान खुराना और नीति मोहन। लिखा और संगीत से सजाया है आयुष्मान खुराना ने और रोचक कोहली ने। सुनिए प्यार भरा गीत।

0: दोस्तों, उम्मीद है आज का ये शाम का सफर और हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: मिलेंगे फिर एक नए अंदाज के साथ, एक नए एहसास के साथ, एक नए आवाज के साथ, फ्रेशनेस के साथ।
0: तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। मुझे रिया प्रियांशी नाग
1: और मैं हर्ष ठाकुर को
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिलाजुला रहा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इससे पहले सुनते हैं ये महत्वपूर्ण सूचना।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। नगरीय निकाय चुनाई में अध्यक्ष के 5 मले 3 पद में भाजपा और 2 पद में कांग्रेस जीत हासिल करिस। शासन स्तर में हुए सकारात्मक चर्चा होए के बाद तहसीलदार मन अपन हड़ताल स्थगित कर दे है और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गए है। केरलम पहुंचे के बाद मानसून ला छत्तीसगढ़ तक पहुंचे में 15 ले 20 दिन के बेरा लगते। अब समाचार विस्तार ले। नगरीय निकाय के आम और उपचुनाव पर आज मतगणना हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ले मिले जानकारी के अनुसार नगरीय निकाय में अध्यक्ष के 5 मले 3 पद में भाजपा और 2 पद में कांग्रेस जीत हासिल करीस। उन्हें पार्षद के 71 पद में 39 में भाजपा और 30 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतीन है। 2 पद में निर्दलीय प्रत्याशी मन जीत हासिल करे है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर मतगणना मतदान के दिन ही हो गये रहीस। आज सारिणीकरण करेगीस और जीते हुए प्रत्याशी मन ला प्रमाण पत्र जारी करेगीस। बताइन है कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय मन के आम और उपचुनाव पर 1 जून के मतदान हुए रहीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा हुए में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के जनता कोती ले श्री मोदी ला बधाई और शुभकामना दिन। उमन किहिन के ए 12 बच्छर में देश बहुत अकन ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करे है। संघरा विकास सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नवा आयाम स्थापित करे है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में देश भर के 42 उत्कृष्ट पंचायत मंडल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करीन। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सरदेह ग्राम पंचायत ल स्वच्छ और हरित पंचायत के पुरस्कार प्रदान करेगीस। तहसीलदार मन अपन हड़ताल स्थगित कर दे है। शासन स्तर में हुए सकारात्मक चर्चा, आरोपी मन के खिलाफ एफआईआर और वैधानिक कार्रवाई शुरू होए के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ सामूहिक अवकाश स्थगित करे के निर्णय ले है। संघ स्पष्ट करे है कि प्रदेश भर के तहसीलदार नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज ले नियमित काम में लहूटगिन है। संघ के प्रांत अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरिया बताएं कि 2 नामजद आरोपी मन के थाना में समर्पण के बाद हड़ताल स्थगित करे के निर्णय लेगीस। बता दें कि सरगुजा के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक संघ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डाले के मामला में प्रदेश भर के तहसीलदार नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक विरोध जतात 1 जून ले सामूहिक अवकाश में रहिन। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के भीखमपुरा गांव पहुंचीन। इस दौरान मुख्यमंत्री जन चौपाल लगा के ग्रामीण मनले गोट बात करीन और शासन के जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन के जानकारी लीन। श्री साय भीखमपुरा गांव करा स्थित सपेरा बस्ती घलो पहुंचीन, जहां ओमन पीएम आवास योजना के हितग्राही मनले भेंट करके ओमन के समस्या सुनिन। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप विभागीय अधिकारी मल्ला निर्देश दिन है कि किसान मल्ला बेरा में खातू उपलब्ध कराए जाए। रासायनिक उर्वरक के उपलब्धता और वितरण व्यवस्था के समीक्षा करत श्री कश्यप जम्मू सहकारी समिति के गोदाम में जरूरी उर्वरक मन के पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करे बर कहिन। श्री कश्यप किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के विस्तार में जोर देवत जम्मू जिला में विशेष शिविर आयोजित करे के निर्देश दिन। प्रदेश में किसान मन के आय बढ़ाए और कृषि क्षेत्र में विविधीकरण ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले राज्य सरकार बासमती धान के खेती ला प्रोत्साहित करे के निर्णय ले है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के अध्यक्षता में नवा रायपुर में ए विषय में उच्च स्तरीय बैठका आयोजित करेगीस। बैठका में श्री नेताम कहिन कि राज्य सरकार किसान मन के आय दोगुना करे के लक्ष्य के संग बासमती धान के खेती ला प्रोत्साहित करही। उमन अधिकारी मल्ला ए दिशा में गंभीरता ले काम करे के निर्देश दिन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
3: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता अउ खबर के विश्वसनीयता ले है हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
2: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में काली 5 जून के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डहाले रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम में आयोजित एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो ही उन्हें वन मंत्री केदार कश्यप विशिष्ट अतिथि हो ही। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख अरुण कुमार पांडे है बताइन कि ए मौका में मुख्यमंत्री और वन मंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान के शुभारंभ करही। उन्हें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहाले विश्व पर्यावरण दिवस में काली रायपुर में कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री OP चौधरी शामिल होही। कार्यक्रम के शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षक मन के प्रशिक्षण सत्र ले होही। छत्तीसगढ़ के 5 नवा शासकीय मेडिकल कॉलेज में 149 पद मन ऊपर संविदा भर्ती करे जाही। चिकित्सा शिक्षा विभाग दंतेवाड़ा मनेन्द्रगढ़ कुनकुरी जांजगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेज पर प्राध्यापक सह प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पद में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करे है। आवेदन के आखिरी तारीख 15 जून निर्धारित करे गये है। विभाग के अनुसार पात्र अभ्यर्थी मन के चयन दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार में करे जाही। इच्छुक उम्मीदवार विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दुर्ग जिला में इबोला वायरस लले के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गए है। कांगो इथियोपिया और युगांडा ले लहुटे 3 लोगन मनला इबोला वायरस के संदिग्ध मान के ओमन के निगरानी करे जाते। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह घलो एकर पुष्टि करत बताइन कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP ले सूचना मिले के बाद स्वास्थ्य विभाग संबंधित लोकन मल्ला पहचान के ओमल्ला होम आइसोलेशन में राखे के निर्देश दे है। बता दन कि केंद्र सरकार इथियोपिया और युगांडा ले आए 2 मनखे मन के आने आने एयरपोर्ट के जरिया सीधा दुर्ग पहुंचे के जानकारी दे रहीस, जबकि कांगो ले लौटे 1 मनखे पहली मुंबई में रुकिस और एकर बाद दुर्ग पहुंचिस। प्रदेश में इबोला वायरस ले जुड़े संदिग्ध मन के ए पहली मामला आगू आए के सेती स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरतत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनैया पंजीकृत श्रमिक परिवार मन के मेधावी लयिका मल्ला सम्मानित करही। योजना के तहत हरेक मेधावी छात्र ले 1,00,000 रूपया के प्रोत्साहन राशि दे जाही। एकरे संग दुपहिया गाड़ी खरीदे पर 1,00,000 रूपया के विशेष अनुदान दे के घलो प्रावधान है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गए है। मौसम विभाग एकर पुष्टि करत बताइस कि मानसून 3 दिन के देरी ले केरलम पहुंचे है। मानसून के 1 जून के केरलम पहुंचे के संभावना रहीस। केरलम पहुंचे के बाद मानसून ला छत्तीसगढ़ तक पहुंचे में 15-20 दिन के बेरा लागथे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि खरीफ सीजन पर खातू और बीजा के पर्याप्त व्यवस्था करे गए है और कालाबाजारी रोके पर निगरानी रखे जाते। रायपुर में दूरदर्शन डहर ले आयोजित मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में ओमन प्रदेश के आने आने जिला ले आए किसान मन ले चर्चा करके खेती किसानी में नवा तकनीक अपनाए के आग्रह करिन। मुख्यमंत्री है कहिन कि राज्य सरकार ड्रोन तकनीक नैनो उर्वरक जैविक खेती और फसल विविधीकरण ला बढ़ावा दे के कृषि ला ज्यादा फायदामंद और टिकाऊ बनाए बर काम करत है। श्री साय है कहिन कि खेती केवल आजीविका के साधन नहीं बल्कि हमारे संस्कृति और पहचान के आधार है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष के 5 मले 3 पद में भाजपा और 2 पद में कांग्रेस जीत हासिल करिस। शासन स्तर में हुए सकारात्मक चर्चा होए के बाद तहसीलदार मन अपन हड़ताल स्थगित कर दे है और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गए है। केरलम पहुंचे के बाद मानसून ला छत्तीसगढ़ तक पहुंचे में 15-20 दिन के बेरा लागथे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।

0: अन्तर्जालमाध्यमेन अस्मिन् महाकार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। स्वस्य शुभाशयाञ्च निवेदयति यत् जगतः योगानुरागिणः क्रीडकाश्च प्रतियोगितायाः कृते समागच्छन्ति। भारत लाओस संबंध विषये राष्ट्रपतिना द्वयोर्देशयोः सहयोग विस्तारस्य संभावनाः प्रतिपादिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् भारतस्य लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्यस्य च मध्ये बौद्धधर्मस्य रामायणस्य च विषयाधारिताः घनिष्ठाः सांस्कृतिक सभ्यतागत सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपति भवने लाओस देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणं विदेशमन्त्रिणं च थोंग सावन फोम विहाने इत्यमुं स्वागतं कुर्वन्ती सा अवदत् यत् उभौ देशौ अस्मिन् वर्षे राजनैतिक सम्बन्धानां स्थापनायाः 70वां वर्ष समाचरतः। सा उक्तवती यत् व्यापार निवेशयोः क्षेत्रे सहयोग विस्तारस्य पर्याप्ताः अवसराः सन्ति। सूचना प्रविधि, स्वास्थ्यं, कृषिः, सिंचनं, विनिर्माणं, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्रेषु सहयोगवर्धनाय भारतं सज्जमस्ति। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः अद्य न्यगादीत् यत् शासन व्यवस्थां भद्रतरं कर्तुं कल्याणकारिणीनां योजनानां प्रभाविनं क्रियान्वयनं सुनिश्चयं कर्तुं प्रविधिना महत्वपूर्णा भूमिका कृता। असौ अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय द्वारा अद्य नवदिल्ल्यां आयोजितानां परिष्काराणां द्वादश वर्ष प्रपूर्त्यवसरस्य उपलक्ष्ये मन्यमानं परिष्कारोत्सवं सम्बोधयन् उक्तवान्। मीरा युवा भारत इति इदं आधिकारिकरूपेण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इत्यनेन मान्यता प्राप्ता। यतो हि एकस्मिन्नेव सप्ताहे अन्तर्जाल प्रश्नस्य कृते सर्वाधिकानाम् उपयोक्तृणाम् उपाधिं प्राप्तवत्, यत्र प्रश्नानाम् आभासीय रूपेण उत्तरं प्रयच्छन्तः 390,000+ अपि अधिकाः प्रतिभागिनः आसन्। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मन्त्री डॉक्टर मनसुख मांडवीयः अद्य नवदिल्ली नगरे आयोजिते समारोहे सम्मानपत्रम् अवाप्नोत्। गतवर्षे अक्टूबर मासस्य 25 दिनांकात् 31 दिनांक पर्यन्तं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 26,000+ प्रश्नस्य इत्यस्य माध्यमेन अभिलेखः प्राप्तः। मनसुख मांडवीय इत्यनेन अस्य कृते वर्धापनं प्रदत्तम्। गुजरात आरक्षि विभागेन राज्ये अवैध रूपेण निवसतः बांग्लादेशीय नागरिकान् विरुध्य ऑपरेशन डेल्टा हंट नामना विशेष अभियानम् आरब्धम्। अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं गत 40 होरासु 40,000+ बांग्लादेशीयाः गृहीताः तथा च 280,000+ संदिग्ध जनानां विषये अन्वेषणं प्रचलति। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अद्य मालवीय नगरे अग्निकाण्डेन आहतान् द्रष्टुं साकेतस्थं निजी चिकित्सालयं गतवती। सा पीडितैः तथा तेषां परिवारजनैश्च सह संवादं कृतवती। प्रत्येकं मृतकस्य परिवाराय 10,00,000 रूप्यकाणां गंभीररूपेण आहतानां 5,00,000 रूप्यकाणां च अनुग्रहधनस्य घोषणा कृता। बिहार राज्यस्य मुजफ्फरपुर नगरे एकस्मिन् निजी चिकित्सालये भीषणाग्निकाण्डे 3 जनाः मृताः, अनेके च आहताः। एषा घटना गतरात्रौ ब्रह्मपुरा क्षेत्रे अभवत्। गंभीर रोगिणः उपचारार्थं अन्येषु चिकित्सालयेषु प्रविष्टाः। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं ये महत्वपूर्ण सूचना।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700001424242।

0: पर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
1: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस उपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स उपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे एच संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी उपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और 3 चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की तकी, सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम किस, इंजे 18% की सिक्ता। टैक्स तगा कमी कित्ता, आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम मायना दुमिद मिंदे। लेकिन संगमरमर इंदनद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडलेकटा बंडाकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़। ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता, आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता। इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीत, जिसमें आप सुनेंगे हल्बी लोकगीत। कलाकार हैं मेघनाथ पटनायक और साथी।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता

0: फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतगणना के बाद आज परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष के 5 में से 3 पदों पर भाजपा और 2 पदों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। जशपुर जिले की सरदी ग्राम पंचायत सहित 42 पंचायतों को आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल प्रदेश में होंगे अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कल रायपुर में एक पेड़ माह के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे, और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। अब समाचार विस्तार से। नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव के लिए आज मतगणना हुई। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 पदों में से 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। वहीं पार्षद के 71 पदों में से 39 पर भाजपा और 30 पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। 2 पदों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतगणना मतदान के दिन ही हो गई थी, आज सारणीकरण किया गया और विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम तथा उपचुनाव के लिए 1 जून को मतदान हुआ था। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में देशभर के 42 उत्कृष्ट पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की सरदी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री सिंह ने पुरस्कार विजेता पंचायतों से कहा कि वे सर्वोत्तम तौर तरीकों को साझा करें, नवाचार को बढ़ावा देकर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करके और अंतिम सिरे तक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से श्री मोदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और विकास, सुशासन तथा जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं।
7: ऐतिहासिक काम हुए, उनका पहला 5 साल गरीब कल्याण के काम हुए हैं और दूसरे कार्यकाल में बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 ए हटा है, आपका अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का मंदिर 5 वर्षों के संघर्ष के बाद वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है, मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए 3 तलाक बिल पास हुआ है। तो ऐसे काम जो असंभव से दिखते थे।

0: माननीय दूरदर्शिता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब पूरे हुए हैं।
1: तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। शासन स्तर पर हुई सकारात्मक चर्चा, आरोपियों के खिलाफ FIR और वैधानिक कार्रवाई शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश स्थगित करने का फैसला लिया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज से नियमित कार्य पर लौट गए हैं। संघ के प्रांत अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने बताया कि दो नामजद आरोपियों के थाने में समर्पण के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
2: इस बात को लेकर चर्चा हुई थी तो जल्दी कार्रवाई कराना कराएंगे। गिरफ्तारी होने पर हम अपने आंदोलन समाप्त कर देंगे। तो अभी हमारे आंदोलन जो है पूरी गिरफ्तारी नहीं होने तक स्थगित किया गया है 15 दिन के लिए, और यदि पुनः बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो 15 दिन बाद भी ये आंदोलन फिर से चालू किया जा सकता है।
1: गौरतलब है कि सरगुजा के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक विरोध जताते हुए 1 जून से सामूहिक अवकाश पर थे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भिखमपुरा गांव पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत कर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। श्री साय भिखमपुरा गांव के पास स्थित सपेरा बस्ती भी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक मेधावी छात्र को 1,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 1,00,000 रूपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में से 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांजगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेजों के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं, और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल 5 जून को वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख अरुण कुमार पांडे ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री और वन मंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। श्री पांडे ने प्रदेशवासियों से पौधरोपण करने की अपील की।
3: कल पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्मृति वन में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें लोग आएंगे। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाहे वाटर बॉडीज हों, वेटलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जंगलों की सुरक्षा का काम है, इको रेस्टोरेशन का काम हो रहा है और ये पूरा प्रयास चल रहा है कि वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण कार्य जंगलों में जो हम कर रहे हैं उससे जो जल स्तर बढ़ रहा है, सारे प्रयास इस तरीके से हो रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा हो और ज्यादा से ज्यादा इस दिशा में नवाचार के कार्य हो सकें।
1: वहीं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर कल रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विषय पर संगोष्ठी तथा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल गौरेला, पिंडरा, मारवाही और जांजगीर चांपा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश डेका ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यावरणीय संकट और भविष्य में संभावित जल संकट को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। राज्यपाल ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल कल लोकभवन और नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। दुर्ग जिले में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से लौटे तीन लोगों को इबोला वायरस का संदिग्ध मानकर उनकी निगरानी की जा रही है। तीनों यात्रियों को होम आइसोलेशन में 21 दिनों के लिए रखा गया है। वर्तमान में तीनों यात्री पूर्णतः स्वस्थ हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इथियोपिया और युगांडा से आए दो व्यक्तियों के अलग अलग एयरपोर्ट के जरिए सीधे दुर्ग पहुंचने की जानकारी दी थी, जबकि कांगो से लौटा एक व्यक्ति पहले मुंबई में रुका और इसके बाद दुर्ग पहुंचा। प्रदेश में इबोला वायरस से जुड़े संदिग्धों का यह पहला मामला सामने आने के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के सिलफिली के पास एक यात्री बस से 20 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर की ओर से आ रही एक यात्री बस में गांजा ले जाए जाने की सूचना ग्रामीणों को मिली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बस की जांच की। इस दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि मानसून 3 दिन देर से केरलम पहुंचा है। मानसून के 1 जून को केरलम पहुंचने की संभावना थी। केरलम पहुंचने के बाद मानसून को छत्तीसगढ़ तक पहुंचने में 15 से 20 दिनों का समय लगता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। युवा संगम फेज 6 के अंतर्गत दिल्ली से आए 60 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों भिलाई इस्पात संयंत्र का भ्रमण किया। इस दौरान युवा प्रतिभागियों को औद्योगिक सुरक्षा, कार्यस्थल सावधानियों और संयंत्र भ्रमण के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला गणवेश वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। सरकार ने 16 जून से शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र से पहले ही यूनिफॉर्म वितरण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। राजधानी रायपुर के सड्डू और माना सहित राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में रिक्त सीटों के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और जांजगीर चांपा जिले की अमिता श्रीवास ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। चांपा पहुंचने पर परिजन और नागरिकों ने उनका स्वागत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतगणना के बाद आज परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष के 5 में से 3 पदों पर भाजपा और 2 पदों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। जशपुर जिले की सरदी ग्राम पंचायत सहित 42 पंचायतों को आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल प्रदेश में होंगे अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कल रायपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का रायपुर
5: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के अभी 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम रे भादु, राम राम
1: राम राम चंद्रु, राम राम अंचिता बलोड़न का सुंदर पेट कट्टी व्यंजन दात्रे
0: प्रेत को राम दुर आ पे पेट आई चिला
1: तो पेट कट्टी व्यंजन दा चिला चंद्रु हम गो जुवार बैठे न्याम रे अल्ले हम दादर भाई ओ चंगाड़ बिल जुवार बैठ छा जा मन में
0: हो आले पर ई दिन चंगाड़ी बस्तर के स्वर कार्यक्रम में दान जम्मा दादर भाइयों सियान साजेन और संग जोरी लोग इन आन चंद्रु
1: और आन बादुन
0: आमिरुल छाज मम
1: राम राम
0: चूड़ी बादु
1: हो
0: चूड़ी रेडियो वेंदन के रेडियो कुडी कुडी के पिटिलेज पिटिलेज छे पाल बाप हुंदर अंदर चिल हुंदो हुंदा
1: हो
0: आ लोग बिल आमिरुल इन को चिल्ले
1: खूबे खूबे माया
0: गो बादु हो चिला रोज जे काम बारेन बारेन तो कटाउल उबम कटाउल पोकम मम चिला मंत्र अतने एक बादु काटाउल को एंगोटो काटाउल मेन वो मंत्र बारे ही काटाओ पोकाटे रा जम है के दियान गियान ता काटाउल ता एरमो
1: एरमो मंत्र इन्हें गिन पक्का पेटाबल पूल तो बनाक तो तंदा था है
0: पूल ता इन्हें फिर चुरी पोका मत आम चिला इन्हें है के आम बस्तर जिला तीन पोकाम बे आम बस्तर जिला बोती एंगोटो अजात अनजात मेन मोम
1: मेन मोम
0: मंत्र अजात अनजात को मेन मोम भी मंत्र इन्हें के आम के जमन जातन जात ले बेले कि हम आदिवासी समाज तो लोगे नाम बे आदिवासी जात ये लोग ना फिर और अलग ही है कि आप लोग ना मेनमो
1: मेनमो
0: नाम की परंपरा इन मम रीति नीति इन मम पकवान बे चिला जैसे कि हम दुर्वा लोग पर चुरा जी हम तुला पेटा काटो में ते आन काटते ना नतनी चिना तुला पेटा तेलती काटो मम तुला तुवालीन अरे के तुला तुवालीन चाती बिल्ला तो मम बांदी पट्टा के नूडो मम चिला बांदी पट्टा आयल पारने के खेल एक तमन मो बंदी पट्टा आरु मायन चिन दिन नूर रना बिल दो थी अलग में
1: अलग में मो
0: तो अतनी के बादु फिर हम इना एंगोटो मेन मेरा जम्मा अलग अलग जातन जाति ना बिल अतनी ये परंपरा मेन मो
1: मेन मो
0: मंत्र परंपरा इन बादु चिला सब ले पर तो सब ले पे तो परंपरा यानी कि तियार मातुर मान
1: तियार मातर बिल या जैसन जैसन की दुर्वा कुल दुर्वा इस अपति मान में चिला मुरिया कुल मुरिया इस अपति मान में
0: गोंदा कुल जम्मा आप लोग इस अपति मान नहीं है परंपरा यानी सब ले मुरे मेन मकीना के तियार मातुर तियार मानुरा ना पर चिला ये देखे आम के ईद नाय नाम बे कोलते मेदीमान कुले मुरिया है था
1: मेदीमान कुले मुरिया
0: मेदीमान कुला या नाथ लेके गुन्ने ला या नाथ लेके कोलते ला लेके दिल वेला
1: दिल वेला
0: ये नें दुआ काम के चेरू बेलेर मो जेत्रा बेलेर मो चिला फिर अनाथ लेके बाजार उल बेला है मंडे उल बेला
1: मंडे उल बेला
0: है तो ये वे के आम गे के ओकुते के मिने ते में पे मिली जुले के एर आउर लोगों ने एक मिल बेटर मो
1: मिल बेटर मो
0: बाजार उल मंडे उल ते के वेंदित बिट्टल वेन बेट गटेर मो अरे आमे के मंजा मेर मंजा लोग बेले बेट गटेर मो
1: बेट गटेर मो
0: तो इतनी एक यम परंपरा में वेंजत पकोड़े के यम पूरा यम
1: पूरा यम
0: नूब हमें नूब पूरे राया
1: ये राया
0: मतलब सोची यम पको मम की हम तिन्यत बेटू परंपरा में जनजाति लोग इन इन पको मम जैसे कि हम ते कि यम कोया समाज ता दादर भैया पर कारचारी इंदे में
1: कारचारी इंदे में
0: कारचारी इंदे रानु के हम गोट लापित लापित ले लापित लोग जुए में
1: जुए में
0: तो इत ये तो सोचे जुव गोहराया इधर ना तो पहले हम परंपरा मेन मो
1: मेन मो
0: आई साब ते जुवेर में कि ना कि जमाए के वेंदी दुटाल बल शाखायर मो चिला तब को इना आ ताकि कुल वेर मेर चिला देखे ये दो एके गाड़ी माटेल ताला गाड़ी माटेल चोत्ती बेल वेर मेर मानती ना बेल दी कुल चित्ता बिल्ला में इंदी कुल फिर पोका पेल चेन मेर
1: चेन मेर
0: अतने के मानतेर बादु ये नाम बे इना आम बस्तर जिले ते भरती ना मैं आरु बट्टेल बेले आम चिला मंत्र आम जनजाति लोग ही ना पर जम्मा पर और अलग अलग जाति ना लोग ही ना
1: अलग अलग मैन मो चिला और
0: मैन मो ये ना कि आट्राना है नाम बे आट्राना बाजा डोला आरु पर वेरोटे नाम बे उंदुराना अतने के एंदुराना बेले अलग अलग एंदुरान जाति के तुंद्राना तुंद्रा नुर्राना हो बेले अलग
1: अलग अलग
0: मंत्र जम्मे ने आप लोग ने देखे परंपरा है
1: परंपरा है और
0: रीति नीति
1: हो और पाठ पाठ रन बोले अलग अलग है जिला
0: और तो जम में आप लोग ना गो
1: हो आप लोग नहीं आए और दूसरे नो गो एरा और चंद्रु एरिया इस आप तीव्र लिया चिला इत किरण देश से नो डलाते के जेठावा देख लाए गोबर बोरे नहीं है और ये अम्म लगा देखे कुरुआ चिल्ले अर्मो चिला
0: और मेदीमान को मेंदुराम
1: अतने के समय समय ती जागर उर बेलेर मो बाजार उर बेलेर ओ बेरे बेरे ती तो जम्मा परंपरा हम गेटरा नो है बचाकता नो है और पाप कुलिन बेल मिर्चिकता नो है चिला हाले हम ले गाड़ा
0: और बेर रेशट पाटिल में माला हम बेर पीछे हम गाट
1: ओ
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: GST काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़। बस, ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोय लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता। HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोर्रो इंजे ओंडोय 18% टैक्स की सी तोड़। इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे। इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता। नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो। कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूड चक्का न गाड़ी 1% GST मोला देने दोरकिता। अदेन के और सोबेर कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता।
0: हाँ गोबादू युगो में तो निगे पार्ट है अपने बाद देखे कि हम कटाव लूब हम चिला ये कटाव में एक परंपरा मात्र आम परंपरा थी चिला हम रीति नीति तो बड़ो डग्गाबेल में
1: डग्गाबेल में ओ एक
0: है चलो डग्गाबेल और देखे हम चिला एयर बिल्ड आप का डग्गाम पकोम हम
1: वो
0: डग्गा पर चिला एन्यो तम मुगे के मेंडू के नेगे तरे चबा हो तो अरे आना आ डग्गेत लेके हम बिना आदत बेले हम बिल मेरी उबेल वड़तो
1: मेरी उबेलेर मो
0: मेरी उबेलेर मो गो आले नांग फिर बेरा चाय दम गाट आली दो डगेन पे नाम डगेन ए पाड्रन मन जा ए किदाय के प्रतिमा है परमिला पांडे आली वेना
6: जुहार संगवारी मन मचु नाव प्रियमिता पांडे आए और आज ही मैं तुम चुका जे धरुनी ले से गोटुक सुंदर कहानी पाठ जे चो विषय आए लालची लकड़हारा और सोना चो टंग्या। तो संगवारी मन खोबे आगे चो गोटा नर्मदा नदी चो रेटे गोटोक नानी असन गाँव रे हुंचो नाव रे रतनपुर और हुनी गाँव ने हरिया नाव चो गोटोक लकड़हारा आपलो बायले गौरी संगे रते रे। हरिया खूबे गरीब रे हरिया जितरो गरीब रे उतरो चे ईमानदार बोले रे और संगे संगे मेहनती बोले रे। हरिया चो जिंदगी चो नियम रहे कि बिहाने बिहाने बेर निकल लो पहले उड़तोर आए और रान बाटे जाऊन दारू बनातो रहे और हुन दारू के बाजार ने बिकुन भाती घर काजे काई जाई सामान बल्लो ने आटा दाल मन के घेनून नेतो रहे। असनी चे जिंदगी चलते रली संगवारी मन फिर एक दिन पता चल ली कि हरिया जो बायले गौरी के 2 साल ले बीमार होली से बीमारी 2 बरख ले हुंचो पीछा छानते जी नहीं रहे। गाँव चो वैद के दखातो के हुन बोल लो कि शहर जाऊक पड़े दे और शहर चो डॉक्टर के दखाऊ पड़े दे। मानतर हरिया लगे इतरो पैसा नी रहे कि हुन गौरी के सहरे अस्पताल दखाऊक नेतो। इतरो सब होलो बात बले हरिया के बे शिकायत नी करते रहे। हुन रोजे भगवान के इतरो इच्छे विनियायते रहे कि हे प्रभु, बस इतरो ताकत दे कि मैं मेहनत करूँ भाती घर चलाऊ सकूँ और गौरी चो बीमारी के बले झटके छंडाऊ सकूँ। और फिर संगवारी मन एक दिन सावन चो महीना रली, खूबे झमाझम बरसा एते रली। जसने चे बरसा खिंडी कम पड़ली, हरिया आपलो टंग्या के धरून भाती रोजे चो आसन रान बाटे

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपका दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: रिवार्ड हाँ, में केंद्र आता रहा।
1: हाँ, और दादा असन कई जगह देखो मिरु है जसन चराउक नीलो ने जसन कुकुर मंचो बोल डर रुआ है ना
0: कुकुर मंचो बोल डर रुआ
1: असन कई इन मंचो तकलीफ तो नहीं जाए सका है गाय तुम चो बकरा बकरी मंचो जसन चराउक नीलो ने तुम चो दखा रखा उन मन के करतर असन कई
0: दखा रखा कर तो खाजी समय मेरे लो दोनों भाई जाऊं दे वहां
1: अच्छा
0: दोनों भाई गेलू जल दोनों पाट रहते रहते बोलू हाँ, मंजी गते चेरी बोकड़ी चरुआ
1: अच्छा अच्छा
0: और आजकल ये छमास ने ज्यादा डर नो आए जेठ पर हम दियरी कमाओ नहीं हम चो दियरी बल्ले पूस महीना ने हुआ है
1: हाँ,
0: दियरी का मतलब उत्तले उन पट कुकुर मन चो डर आए
1: अच्छा हाँ हाँ
0: आये बे छमास ने उतरो डर नो
1: नहीं आए होती हाँ तो आए तो दादा ये सांगना जसन की गोटो गोटक जसन बोकड़ा बिकलो ने मोल हिसाब ने कितला हंचा वाद जलना
0: अच्छा बड़े बोकड़ा वालों ने 16-17-18 तक का मरुआ
1: बोले उन मन साइज हिसाब हो
0: इसको साइज हिसाब
1: नानी बड़े चो हिसाब में विकसित होती
0: नानी चो नानी मोला है
1: हाँ हाँ
0: बड़े चो कांड जाने इन्हें
1: हाँ उन तो आए थी हाँ और देचो संगे और कहीं आ सकता ना बकरा मेडी मन के संगे बकरा संग संगे और कहीं आ सकता और कहीं ऐसे
0: पशु हिसाब ने बोलू ये बोकड़ी मन चो तो गोट सर लीने
1: हाँ, हाँ.
0: ये मन चो सरुन माती और तो नहीं आता बैला गाय मना सर
1: अच्छा अच्छा गाय बोला सर
0: गाय
1: गाय निकाय गोरस बैल निकला
0: गोरस तो भी तीनों आते
1: अच्छा.
0: बोलू हम चो देसी गाय मना
1: हाँ, हाँ. अच्छा और दादा ये सांग जसन की जो पशुपालन तो कर सी पशु पोसी तो ये चो मूरहार बोलू बे जसन पोस तो का चो विचार इली बे आगतले बोले तो आगे तो पुरखती बेरा तुम चो ये मात्र तुचो बेरा ले कहीं असन सरकार बाटले कहीं से बोलो बे लाभ धर रही ना जसन सरकार बाटले मीरू आए जी उनचो बीज नानी नानी जसन छेरी मन बोल मीरू
0: छेरी बोकड़ी पशु छेरी मन मीरू पशु विभाग बाटले
1: कहीं लाभ धर रही
0: लाभ बोलू डॉक्टर दखलो आर मके बोलो कि तु बोकड़ा उताले आन से उनचो का जे अलग रागे दे कुड़िया एक कितर दिन डापुआ आर उता कितर दिन मिला हुआ
1: हाँ हाँ
0: एक नहीं मैं उताले पास करूं दे इंदे बोलो
1: अच्छा
0: तो उताले पास करूं दे रे मछई बोकड़ी चेरी मन के पास करूं दे
1: हाँ हाँ तो बोलो बे उन बट चो जोन बोकड़ा छेरिया उन खिनिक कान बड़े बोल रहे उन होती है
0: ओ बड़े कान या मां
1: हम तो देसी आनो आता
0: है देसी आनो हां
1: हां
0: तो मैं एक पास करूं दे इंदे बोलला और उनके पास करूं दे रे लो
1: अच्छा
0: पैसा बोल मीरू रेली मक बोले
1: हां हां
0: तो 60,000 जो सेक्शन रहे
1: अच्छा
0: उन पाचे के बीमा
1: हाँ
0: बीमा पे 50,000-10,000 फिर जमा कर लेने
1: अच्छा
0: तो 50,000 मके मीर ली
1: हाँ हाँ
0: देख 3 साल ले तुझे बीमा चो कहीं बोकड़ी मरे दे नालचेरी मरे दे
1: हाँ हाँ
0: तो ये बीमा मीरे दे बोल
1: अच्छा
0: 3 साल तक उन जुड़े ही ना
1: नहीं कहीं ये
0: नहीं, नहीं, नहीं हाँ, मरत बाचला
1: हाँ
0: गेली मचे उन बीमा भी थी पका गेली
1: और सरकार बाट चो मल गड़ नियम रु आए असनी नहीं नहीं तो उन करुक बल पड़े से कर मार ले फायदा असन उधापड़े काई होलो नहीं हमार ले मुआ हो जाए
0: मीर तो का
1: हां तो आय तो दादा ये सांगना जसन की इतलो छेरी बकरी तो पोसित मानतर असन काई जसन पशुपालन विभाग हो ना ले कोनी आपलो कृषि विभाग बाट ले बोले तू कहां है असन बाहरी जाऊ रलीस ना ट्रेनिंग वगैरह ने
0: नेवरला अच्छा जो डो डॉक्टर साहब मन रायपुर ले नेवरला
1: अच्छा
0: तो रायपुर ले कुबे दूर ने तेरला ना इडली बल तो गांव ने
1: अच्छा इडली बल ने तो का छोड़
0: रखी तो का ओ आधा रास्ता ले फिर पानी मारो उंदीली भयंकर पानी मार ली दकुकनी होते रहे
1: हां हां
0: हुसन टाइप जो पानी मार ली उनका जुन मन बोलला के बट बर्फ गसर ली नी जाऊं बोलला
1: अच्छा
0: आधा रास्ता ले
1: फिर हां हां
0: और फिर उता रायपुर ने फिर चाय चाय पी लियो और फिर उन लग बुलाला डेरी बुलुआ
1: अच्छा हाँ हाँ
0: डॉक्टर मन चीज
1: हाँ हाँ
0: डेरी मन दकाला डेरी दकाला
1: अच्छा
0: आरु गोटक लग चेरी रो उतना सौ मूड ले पार होता ने
1: हाँ
0: उत्ता नीला साहब मन आर तुच्छन बल चेरी आस दकासन करुन पोस्त रहा है
1: अच्छा दकाला ने
0: बोलते दकाला
1: अच्छा हाँ
0: हाँ उन मन अच्छा ले डोंगा मन असन बनान रो
1: हाँ आरु
0: ता काना पीना मन दाना दे होत
1: अच्छा बोले उन मन के उतलो चरत का चे बोले उ बटे ठानी रल तारा ने बना लास होती मन चरत दाना दे तो बना डोंगा मन बना लास
0: दाना
1: हां हां
0: उसान बाती उन मन देवत
1: अच्छा
0: ए दोरई मनात की सरकारी चो सरकार चो चेरी बुकड़िया की हाँ, गर्विता मन चो आजल मकबल इतरो पता नियोली ना नी सांगला मैं बोल नी पुछली कुबेलो गांव
1: अच्छा
0: एक लाइन में
1: तो ये बाटले किचन संजय रहा जाली
0: आमचो डेंगा मापाराले तीन चार चार जान जाऊ रहे।
1: अच्छा ये तुम चो पंचायत ले बोले तुम चो लोंडी गुड़ा ले।
0: हाँ नहीं हम चो ही पारा ले डेंगा हम बापा।
1: हाँ
0: हाँ चार जान जाऊ रहे लो गड़िया पदर बोले आद गड़िया चो। अच्छा। एक लो आए उन चले परया गुड़ा चो गोटो गाड़ी गाड़ी बीता मालिक है।
1: अच्छा अच्छा
0: लोंडी गुड़ा चो दुई जाना।
1: हाँ हाँ
0: जमा सात कटक जान जाऊ रेलू हम चे बलाक चे इतर जाऊ रेलू।
1: अच्छा अच्छा
0: बाकी बाहर ही चक नी नी नी डरला।
1: हां यार तक आए तो दादा जैसे पशुपालन संग संग यार तो जो खेती बाड़ी हिसाब ने ये बे काय फसल धर ले सी जाले
0: ये बे बल्ला ने आमी दाने च लगावा बाबू।
1: अच्छा बोलो भी यही सी चमास बेराच बतर बेराच
0: चमास बेराच जेड बेरी तो कमाउनो हम के तक टी बेल नी आए।
1: हां हां
0: कहीं नहीं आए।
1: अच्छा
0: ये भी चमा से बेरा कमावा दान कमावा।
1: हाँ हाँ
0: और कंडे काम चो जित्र बोला से छह एकड़।
1: हाँ
0: मैं जोंदरा लगा लू से।
1: अच्छा ये जोंदरा बोलू भी यही पानी तो सुविधा नहीं आए बोल सी तो ये भी ची आए होती
0: ये भी ची
1: बतर बेरा ची उन
0: बतर है बेरा।
1: हाँ हाँ तो ये जोंदरा देसी भी था कि सरकारी
0: नहीं सरकारी बोलू सरकारी।
1: हाँ हाँ बोलो बे घेड़ा आगर नहीं करते भी थे तो उन जो बीजा कहाँ मिली जाए ना तो मन
0: ये ए परसा घुड़ा ले आन लू।
1: अच्छा
0: हाँ हाँ ना तो मुंडा गांव लगले सोनार। अच्छा। पाल मुंडा गांव ले ना तेरे लू।
1: हाँ हाँ बट अच्छा मिरेस भी ने बीचो बीजा
0: उसनी बोलला अरे सु आग दिला तो वो नीचे रेट फाड़ू दी लोन भी था। अच्छा। ये हम चो लोटी गुड़ा में 1400 ने दे इंदे बोल लो रिन टू ना भी था।
1: अच्छा
0: उता फिर गेलू उन्हीं बोल 1400
1: नहीं खिनिक बीज ने फरक बोल पल्ली कहन जाले निकल ली उनचो घेड़ा में निकल ली
0: घेड़ा धरुक मुरियाली।
1: अच्छा।
0: नहीं कंडी के बीच ड्राई लाग ली बाबू।
1: हाँ,
0: अच्छा नी आकरे बराबर।
1: अच्छा अच्छा
0: ए ही लग चो बीच चलो नाम के अच्छा आकरू आए।
1: हाँ,
0: अच्छा वो आयेसु खूब घाटा होली।
1: अच्छा, नहीं ये भी तो घेड़ा और निकल पता चले पूरा टूटा ला जल नहीं।
0: हाँ टूटा लन पता पता चले दे।
1: अच्छा अरे जो बिक्री मंडिन करवास का कहीं असनी बाहर ही आए जल
0: नहीं गोटोक ये तो शहर चो सेट।
1: हाँ हाँ
0: घरे जाओ आए।
1: अच्छा अच्छा
0: गोपाल नाव चो सेट आए।
1: हाँ
0: हाँ घर ले उठा हुआ यार आनु है।
1: अच्छा हाँ तो आई तू दादा इतलो अच्छा है तो जो कमानी जो गुट के तो सांगलीस मातर जसन ये भी इतलो तो ही छेरी बकरी मन बोल पोसी मेंढे बोल पोसी तो बिक्री भांजरी करन तो के बोलो बे तो जो काम ने संतोष लागेस ना।
0: संतोष लागे से तेबे तो संगालू से
1: ने तो आए आए
0: और हम के
1: नहीं कोनी कोनी आसन अस्कट बल हुआ ना कोनी चरात काचे अस्कट हुआ थी बोलो भी कुछ लग जगह नहीं आए तो उतलो मुंड के संगन बाती काय करूं बल कोनी कोनी आसन विचार रुआ है कुछ
0: रुआ
1: तो तू के तू जो गोट के सुनन बाती है जो जितलो बोले रेडियो सुन सो जितलो बोल किसान भाई बहन मन और मन बोले तू जो गोट के सुनन खिनी कादक जमीन बाड़ी आसे नाल कहीं आसन पशु पोस्तो कहीं उठल ने तुची यसनी तुची गोट के सुरन मन बल करो ने करो चाह सकते
0: करुण का हाँ।
1: सकते और दादा जसन ये बिक्री भाजरी करुण बाती कोनी कोनी असन दादा दीदी मन बोला सोत की खिनिक पैसा जो कहीं चीना बाना धरन बलते कहीं असन धरला जा बोले भाई तू ची कमाई नहीं ची।
0: हाँ बोकड़ी ची कमाई में
1: बोकड़ी ची कमाई ची
0: तो चीना बाना बल्लन बाबू आम के जर मुंड दरल नु नीचे पैसा लागू है।
1: हाँ, हाँ।
0: सगा गेलो नु नी पैसा
1: आय छी
0: आ कोनी ईलन बोलू नीचे पैसा
1: आए, आए, तो आए लागे छी आराम से बस बस्तरियान फिर जान सीत मूर कितलो एक हार तिहार होली जाले उन साल भर भर कारने चलती जी रहे
0: चलते
1: जी रहे तो वो लागे छी
0: हर महीना बोलता है ने आले नवा आमूस होली।
1: हाँ
0: आमूस ले दाई नवा आम रहे नवा सर ली बोल दियारी है
1: दियारी है फिर बीच बीच ने फिर बिया आए ना हाली को नी मरनी सर नी आए असन होती चे रहे ना
0: होते चे
1: रहे लागे लागू ची है हम तो आए
0: तो बाबा चो रतो बेराले चो पैसा के वट लेका इडबरु जोड़ी।
1: अच्छा
0: मनोज नाव है।
1: हाँ
0: हाँ उनके बिया करूं दिलू उनचो खर्चा दिलू।
1: हाँ
0: हाँ चले तीन साल तक फिर पैसा हमके जोंगुक पड़ ली।
1: हाँ हाँ हाँ
0: आ येसु गोटोक बोर करा लू से।
1: अच्छा गेट पे। हाँ हाँ निकरेस पानी। अच्छा
0: अच्छा निकरेस
1: सक्सेस होली से।
0: सक्सेस होली
1: से उसन ने ये तो और अच्छा कमा से उसन ने शेरी बकरी संग संग बोर बोर होली जल चमास पे रहो।
2: बादू
3: हो रे
2: चोड़ी हम डॉक्टर और बे रिसेट पार्टा मेनमो अलादीन बल एयर पिची
3: आला

0: बाद
1: हो रहे
0: चूड़ी पाट पाट रन लोग आए देखे कलावती और
1: संगत
0: लोग आए
1: चंद्र चूड़नी कामे दमेन्यो पाटा बेलेन्यो ए दयाम चंदन बेरा बेलेर मचिला
0: मंत्र हम डकड़ो गाउर पर पाटा मेन मो आले दिलेर पिपाम घाट आले पिचियाम घाट

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है डांडा माली, जिसमें आप सुनेंगे ध्रुवी लोकगीत। कलाकार हैं कोया और साथी।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे डांडा माली, जिसमें आपने सुना धुरवी लोकगीत। कलाकार थे कोया और साथी। अभी रात के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम पीलामन काजी गोट, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर एनी बेसेंट के विषय में। प्रस्तुति है पूर्णिमा सरोज की।

पीला मन चो गोट सुन तो सब फाय नानी बड़े पीला मन के मोचो बाटले खूबे खूबे माया। तो देखा पीला मन हमी आप मन का जे खूबे प्रसिद्ध लोग मन चो जानकारी अच्छा अच्छा काम कर लो लोग मन चो देश का जे समाज का जे जोन मन पूरे काम करून गेला हुन मन चो जानकारी तुमन मन लगे रोजे दिन आनुसे। तो आज ही असने गोटोक हम चो आजादी का जे संग दिलोर गोटोक खूबे अच्छा पूरे रहू आदर्श व्यक्तित्व चो धनी महिला एनी बेसेंट चो बारे ने आज पीला मन का जे जानकारी धरून भाती इले से। डॉक्टर एनी बेसेंट चो जन्म लंदन शहर ने 1 अक्टूबर 1847 ने हो रहे। ये मंचो बाबा अंग्रेज रला और हुन मंचो काम डॉक्टरी रहे। बाबा चो डॉक्टरी संगे

संगे गणित आरु दर्शन अध्यात्म ने खूबे रुचि रली। ये मन जो आया गोटोक आदर्श आयरिश महिला रहोत। डॉक्टर बेसेंट जो उपरे हुन जो आया बाबा जो धार्मिक विचार मन जो गहरा प्रभाव रली। आपलो बाबा जो मरतो बेरा डॉक्टर बेसेंट मात्र 5 बरक जो रहे। बाबा जो मरतो पाछे पैसा कौड़ी जो दंड होतो कारण ने ये जो माए हुनके हेरो नीली हुता मिस मेरियट जो संरक्षण ने ये मन शिक्षा प्राप्त करला। मिस मेरियट ये मन के कम उम्र ने ची फ्रांस और जर्मनी देश मन तक नीला। हुन देश मन जो भाषा सीखलो आरु 17 बरक जो उम्र ने आपलो आया लगे आपसी ली। आरु जुआन रतो बेरा ये मन जो जान पहचान रेवरेंड फ्रैंक नाव चो गोटोक युवा पादरी संगे होली। आरु सन 1867 ने हुंचो संगे एनी बेसेंट चो बिहा बले होली। मांतर दोनों चो विचार मन ने मेल नी रहे। नानी सोच भी ता मनु संगे असाधारण व्यक्तित्व संपन्न आरु स्वतंत्र विचार बीती आत्मविश्वासी महिला के संगे संगाव नी सकला। सन 1870 तक एनी बेसेंट दुई पिला चो माए बले हो रली। ईश्वर बाइबिल आरु ईसाई धर्म ले हुन मन चो खिंडिक विश्वास घुचू रहे। पादरी मनुक आरु बेसेंट जो संगे रतोर कठिन होते रहे। आखिर ने 1874 ने हुनमन छांडा छांडी होला। ये जो पाछे एनी बेसेंट के पैसा कौड़ी जो खूबे डंड चिपा होली। पाछे आपलो स्वतंत्र विचार जो संबंध ने लेख मन लिखुन भाती हुनमन पैसा कमाओ मूर करला। डॉक्टर बेसेंट असन बेरा चार्ल्स ब्रेडला जो संपर्क ने लगेली। अदाय हुन सख करतो जो ठान ने ईश्वरवादी होन गेली। कानून चो सहायता ले हुन चो मनुक आपलो पीला मन के पावतो काजे सफल होलो। ये घटना ले हुन मन के खूबे दंड होली। डॉक्टर बेसेंट ये बेरा ब्रिटेन चो कानून चो खूबे निंदा बले करते ये बल्ली कि ये खूबे अमानवीय कानून आए जोन पीला मन के हुन चो मायले अलग करुन दिलो। मैं आपलो दुख चो निवारण दूसर मन चो दुख के धुरिया गुचाउन करेंदे आरु सफाय अनाथ आरु असहाय पीला मन चो माय बनेंदे। डॉक्टर बेसेंट आपलो बल्लो ये गोट के सच सिद्ध कर ली आरु आपलो आगर ले आगर जीवना के दीनहीन अनाथ मंचो सेवा ने बिता ली। महान ख्याति प्राप्त पत्रकार विलियम स्टीड जो संपर्क ने एउन हुंचो लेखन आरु प्रकाशन काम ने रुचि बाढ़ ली। आपलो आगर समय के हुन मन मजदूर मन अकाल पीड़ित मन आरु झुग्गी झोपड़ी मन ने रतो लोग मन के सुविधा दिला तो काजे देते रहे। हुन कैक बरक तक इंग्लैंड चो सर्वाधिक शक्तिशाली महिला ट्रेड यूनियन चो सेक्रेटरी बले रली। हुन आपलो ज्ञान आरु सखत के सेवा चो माध्यम ले चारो बाट फैलातो काजे खूबे जरूरी समझते रहे। हुन चो विचार रहे कि बिना स्वतंत्र विचारों के सत्य की खोज संभव नहीं है। सन 1878 ने ची हुन मन पहिल हार भारत वर्ष चो बारे ने आपलो विचार के प्रकट कर लो। हुन चो लेख आरु विचार मन भारतीय मन चो मन के खूबे प्रभावित करला आरु हुंचो उपरे मया बढ़ाला। अदाय हुन भारतीय मंचो मंजी ने काम करतो काजे दिन रात विचार करते रहे। सन 1883 ने हुन समाजवादी विचारधारा बाटे आकर्षित हुन सोशलिस्ट डिफेंस संगठन नाचो संस्था के बनाली। ये संस्था ले हुंचो सेवा काम मन खूबे सम्मान पावलो। ये संस्था ले असन मजदूर मन के दंड मिरतो ने बोले सुरक्षा मिरली जोन मन लंदन चो बाट ने सड़क ने निकरतो जुलूस मन ने भाग धरते रहो। सन 1889 ने एनी बेसेंट आध्यात्मिक विचार थियोसोफी चो विचार मन ले प्रभावित होली। हुंचो भीतरे गोटोक शक्तिशाली अद्वितीय आरु विलक्षण भाषण देतो चो कला रली। ये लागो हुन थियोसोफिकल सोसाइटी चो गोटोक प्रमुख वक्ता चो रूप ने आपलो ठान बना ली। हुन मन सफाय संसार के थियोसोफी चो शाखा मन चो माध्यम ले एकता चो सूत्र ने बांतो काजे जीवना रत ले प्रयास कर ली आरु भारत देश के थियोसोफी चो गतिविधि मन चो केंद्र बना ली। एनी बेसेंट चो 1893 ने भारत अमरतो होली। सन 1906 तक हुंचो आगर समय वाराणसी ने बीतली। हुन मन 1907 ने थियोसोफिकल सोसाइटी चो अध्यक्ष निर्वाचित हो रला। हुन पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता चो कड़ा आलोचना करुन प्राचीन हिंदू सभ्यता के श्रेष्ठ आरु खूबे अच्छा सिद्ध कर ली। धार्मिक शैक्षणिक सामाजिक आरु राजनैतिक क्षेत्र ने हुन राष्ट्रीय पुनर्जागरण चो काम के मूर कर रली। भारत काजे राजनीतिक स्वतंत्रता खूबे जरूरी आए बलून ये उद्देश्य के पावतो काजे हुन होम रूल आंदोलन संगठित करुन हुन जो नेतृत्व बले करु रहे। 20 सितंबर 1933 ने
हुन मंचो देह मद्रास ने ब्रह्मलीन होली बोलो ने मरना होली जीव रत ले आजीवन वाराणसी के आपलो मन ले घर मानतो एनी बेसेंचो अस्थि मन के वाराणसी आनून शांति कुंज ले निकरलो गोटक विशाल जन समूह संगे खूबे मान सम्मान संगे नंदी ने बोहड़ा उंदीला। डॉक्टर एनी बेसेंचो कैक ठन खूबे अच्छा विचार मन रहे हुन मन के बोले मैं सांगे से। डॉक्टर बेसेंचो जीवना चो मूल मंत्र रहे कर्म। हुन जो नियम सिद्धांत उपरे विश्वास करे हुनके आपलो जीवना ने बोले उतराउन उपदेश दे। भारत देश के आपलो मातृभूमि मानते रहे। हुन जन्म ले आयरिस बिहार ले अंग्रेज आरु मन ले भारत देश के अपना तो कारण ले भारतीय रली। बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी मन बले हुंचो व्यक्तित्व चो प्रशंसा करो। हुन भारत चो स्वतंत्रता चो नाव ले आपलो बलिदान करतो काजे बले तैयार रहे। एनी बेसेंट भारतीय वर्ण व्यवस्था चो खूबे प्रशंसा करते रहे। मानतर हुंचो पूरे गोटोक समस्या रहे कि एके व्यावहारिक कसन बनाओ खोए दे बोलते जेचोले सामाजिक तनाव कम हो। हुंचो मान्यता रली कि शिक्षा चो समुचित प्रबंध रतो राय। शिक्षा ने धार्मिक शिक्षा बले शामिल रहो असन शिक्षा देतो काजे हुन सन 1898 ने वाराणसी थाने सेंट्रल हिंदू स्कूल चो स्थापना कर ली। सामाजिक बुराई जसन की बालपन चो बिहा जाति व्यवस्था विधवा बिहा विदेश यात्रा असन तीज मन के गुचातो काजे हुन मन ब्रदर्स ऑफ सर्विस नाव चो गोटोक संस्था चो संगठन कर रला। ये संस्था चो सदस्यता काजे गोटोक प्रतिज्ञा पत्र उपरे हस्ताक्षर करु पड़े जसन की प्रतिज्ञा मन रहोत मैं जाति पाति उपरे आधारित छुआछूत के नी माने। मैं आपलो लेका पीला चो बिहा 18 बरख चो पहल नी करें। मैं आपलो लेकी चो बिहा 16 बरख चो पहल नी करें। मैं आपलो मेहरार मन के महिला मन के बेटी मन के और कुटुम चो दूसर मेहरार मन के शिक्षा देतो काजे पूरे रहें दे। मेहरार मन चो समस्या मन के सुलझातो प्रयास करें दे। मैं सफाय लोग काजे शिक्षा चो प्रचार करें दे। मैं भेदभाव मेटातो काजे प्रयास करें दे। मैं कार्यकर्ता मन ने आध्यात्मिक शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक उन्नति बाढ़ती जो क्षेत्र ने एकता अंतर प्रयास और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दखा रखा और निर्देश ने करें दे। ये मन रहो हुंचो प्रतिज्ञा पत्र ने। डॉक्टर एनी बेसेंट जो मान्यता रली कि बिना राजनीतिक स्वतंत्रता चो ये सफाय कठिनाई मन चो समाधान हो नी सके। डॉक्टर एनी बेसेंट स्वभाव ले गोटोक धार्मिक महिला रहे जो हुंचो राजनीतिक विचार चो आधार हुंचो आध्यात्मिक अरु नैतिक मूल्य अरु नैतिक आचरण रहे। हुंचो विचार रहे कि अच्छाई चो बाट अध्यात्म चो बिना संभव नी आए बोलून। कल्याणकारी जीवना काजे मनुख चो इच्छा देवी देवता चो इच्छा असन रतो रहे। राष्ट्र चो निर्माण और विकास तेबे संभव होए दे जेबे हुन देश चो अलग अलग धर्म मन चो मान्यता मन और संस्कृति मन ने एकता रहे दे। सच्चा धर्म चो ज्ञान आध्यात्मिक चेतना ले च मिरे से। हुन चो असन विचार मन के महात्मा गांधी बले स्वीकार करला। जूना प्राचीन भारत चो मान्यता और संस्कृति चो स्वरूप बले आध्यात्मिक रहे। अई आध्यात्मिकता हुन समय ने भारतीय मन चो गोटोक पूंजी असन रहे। डॉक्टर एनी बेसेंट चो उद्देश्य रहे कि हिंदू समाज और हुंचो आध्यात्मिकता ने इलो विकृति मन के गुचातोर। हुंचो विश्वास भारतीय पुनर्जन्म उपरे बले रहे। हुन ये बले मानते रहे कि पिछला जन्म ने हुन पक्का हिंदू रली होती। हुन धर्म और विज्ञान ने बले फरक नी मानते रहे। हुंचो धर्म उपरे विश्वास होतो कीर्ता ने हिंदू धर्म चो खूबे अध्ययन बले करु रली। हुंचो भगवद गीता चो अनुवाद अंग्रेजी ने हो रहे जेचो नाव थाट्स ऑन द स्टडी ऑफ दी भगवद गीता। ये पुस्तक जो छपतो ये गोट जो प्रमाण आए कि हिंदू धर्म और दर्शन ने हुंचो कितरो गहरा आस्था रहे। हुंचो बलतो रहे कि हिंदू धर्म ने इतरो संप्रदाय अलगे अलगे रतोर ये गोट जो प्रमाण आसे कि यथा सफाय लोग के स्वतंत्र बौद्धिक विकास का जे प्रोत्साहन दे जाए से। हुन मानते रहे कि विश्व के बाट दखातो क्षमता भारत देश ने ची आसे। हुन भारत ले अंधविश्वास ने पढ़लो लोग मन चो मन ले अंधविश्वास के गुचाऊ चाहते रहे। डॉक्टर बेसेंट गरीब मन चो सेवा के आदर्श समाजवाद मानते रहे। गरीबी के गुचातो काजे हुन चो विश्वास रहे कि औद्योगिकरण होतोर जरूरी आए। हुन मन ये दखला कि महिला मन के काई गोट चो स्वतंत्रता नी आसे बोलून। ये काजे हुन नारी सुरक्षा जो प्रश्न के बले उठा ली और जोर देउन समाज ने सफाय बाटे विकास काजे नारी चो अधिकार काजे हुनमन पूरे एवरला। डॉक्टर एनी बेसेंट आपलो जीवना ने कई ठन पुस्तक लेख आरु खूबे धार्मिक विचार चो
पुस्तक मन के लिखु रहत। जोन मन थाने ये मन जो प्रतिभा

लिखुरावत आरु पत्रिका मंचो समाचार मंचो जैसन कि न्यू इंडिया ये मंचो संपादन बले हुनमन करू रला। ये मंचो लिखलोर पुस्तक मंचो नाव मनासे डेथ एंड आफ्टर थियोसोफिकल मैनुअल 3 1893 आत्मकथा 1893 इन द आउटर कोर्ट 1895 असने ही ये मंचो लिखलोर पुस्तक मंचो संख्या मिला जुला करून लगभग 505 ग्रंथ आरु लेख मन ये मन लिखू रहत। डॉक्टर एनी बेसेंट हाउ इंडिया रोट फॉर फ्रीडम ये कृति के बले लिखू रहे। असन रहे आदर्श व्यक्तित्व चो धनी महिला डॉक्टर एनी बेसेंट। यही संगे पीला मंचो काजे गोट सुनतो सब फाय नानी बड़े पीला मन के खूबे खूबे माया।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीलामन का जेगोट, जिसमें आपने सुना डॉक्टर एनी बेसेंट के विषय में। प्रस्तुति थी पूर्णिमा सरोज की। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन

0: पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
2: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
8: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
9: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asks the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number one, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top three. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
11: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
10: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. Union Home Minister Amit Shah today said the Narendra Modi government entered the era of violence in the Northeast and transformed the region from a hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, or NEC, Mr. Shah, in a social media post, said today that NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture. In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens, as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said that yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the Ekta Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said that yoga unites the mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world.
8: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। और निश्चित तौर से इसमें इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी।
10: We have a report.
9: The Ekta Arena in Ahmedabad has opened its door to more than 400 participants from 60 nations, including international contingents from USA, Ghana, Kenya and Malaysia. Host nation India is fielding a strong 122-member squad competing across six age categories from sub-juniors to senior masters. In a global first for the sport, an advanced electronic scoring system has been introduced to ensure absolute transparency in judging every posture, balance and flow. This championship signifies is a major transformation for Yogasana, elevating it from a discipline of spiritual wellness into a highly technical, competitive sporting event aimed at Olympic movement. Aparna Khon, Akashwani News, Ahmedabad.
10: Defense Minister Rajnath Singh today approved a two-fold increase in financial ceiling for field commanders to strengthen operational efficiency in New Delhi. He also released the revised delegation of financial powers for the defense services, including medical and works projects. The Ministry of Defense said the revised delegation of financial powers will facilitate procurement of more than 1,25,000 crore rupees through the revenue route in line with the current year's budgetary allocations. Union Public Service Commission has developed face authentication protocol in its endeavor to enhance the integrity of the examination process and prevent impersonation. The Commission successfully implemented face authentication during recently held Civil Services and Indian Forest Service Preliminary Examination 2026. The system enabled live, real-time authentication of candidates at exam venues through mobile phone-based verification by invigilators, ensuring seamless identification and eliminating the possibility of impersonation and malpractice. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said that India has made extraordinary strides in renewable energy, emerging as one of the world's top producers of non-fossil fuel capacity. The minister made these remarks on the event of 2 years of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, scaling the solar home to 1 crore rooftops in New Delhi. He said the main reason for the success of the scheme is that citizens of the country have understood that they can generate their own electricity on rooftops and the electricity bill can become zero. The Ministry of Parliamentary Affairs and West Bengal Legislative Assembly today signed an MOU for the implementation of National E-Vidhan Application or NEVA in West Bengal Assembly at Parliament in New Delhi. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju termed the integration of the West Bengal Assembly into NEVA as historic. He said that all assemblies and parliament of the country have now come in onto a single platform. Mr. Rijiju said that this application has been launched to fulfill Prime Minister Modi's vision of One Nation, One Application. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri and Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari today launched India's first flex-fuel passenger vehicle by Maruti Suzuki in New Delhi. Flex-fuel vehicles can operate on a range of ethanol-petrol blends from E20 up to E100. Speaking at the launch, the minister said the entry of flex-fuel technology into the passenger vehicle segment is not merely a product launch but the beginning of a new chapter in the country's energy transition. Mr. Puri said that large-scale adoption of flex-fuel technology can significantly multiply the impact of ethanol-based mobility.
12: India's flex-fuel journey expands from two-wheelers to four-wheelers, and this transition is significant. Today, India has over 30 crore two-wheelers on the road, but we also have 37 lakh passenger vehicles representing family mobility and the future of personal transportation. When flex-fuel technology enters this segment at scale, the impact multiplies dramatically. This is the beginning of a new chapter in India's energy transition.
10: Mr. Gadkari described the launch as a remarkable and forward-looking achievement. The minister noted that the milestone aligns with the vision of Prime Minister Narendra Modi for clean, sustainable and self-reliant mobility. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and the youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards ease of doing business. Our report.
13: These reforms have strengthened investor confidence, promoted entrepreneurship, and enhanced India's position as a globally competitive business destination. Startup India Initiative, launched in 2016, is nurturing innovation, promoting entrepreneurship, and enabling investment-driven growth. Due to the efforts of the government, the number of startups has gone up to 2,23,000 in March this year from just around 500 in 2016. The Income Tax Department launched the new e-filing portal in June 2021 to provide greater taxpayer convenience. GST reforms provided an additional boost to ease of doing business. Talking to Akashvani News, a chartered accountant Manoj Baser of Thane in Maharashtra said that the reforms in direct and indirect taxes has brought economic stability.
5: Kendra Sarkar ke apratyaksh aur pratyaksh karke upar.
14: The indirect and direct tax reform undertaken by central government are a major step forward the country's economy. Through its indirect tax reforms, the government has moved towards the vision of one nation, one tax. It has also significantly reduced the complexity of multiple tax structure by consolidating into fewer slabs, and there are indications that further rationalization may take place in the future.
13: To address procedural hurdles and simplify MSME registration, the government introduced Udyam Registration Portal. The MSME registration on the portal has increased from 10,000 in October 2020 to over 8,31,000 till date. To digitize and make a public procurement more streamlined and inclusive, government e-marketplace GEM was introduced in 2016. It has achieved a cumulative gross merchandise value of over 18 lakh crore rupees. Speaking to Akashvani News, a seller in GEM and a CMD in a company, Kamini Gupta, said the process in GEM is simple and transparent.
6: The most important thing was how to reach out to different departments. And we became a seller on GEM platform, which is a government e-marketplace. And GEM became a blessing in our lives because it makes government purchasing transparent, efficient and hassle-free.
13: India's ease of doing business framework today reflects the combined strength of digital infrastructure, policy reforms and trust-based governance. With Dipen, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
10: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said, India and UK are well positioned to build a new future-oriented and mutually beneficial partnership. In his remarks at the meeting with UK Foreign Secretary Vyet Cooper in New Delhi this evening, Dr. Jayashankar said the meeting will be an opportunity to discuss the India-UK Vision 2035 under all the five pillars of growth, technology and innovation, defence and security, climate and clean energy, as well as education. On to sports. In Indonesia Open Badminton, Indian pair of M.R. Arjun and Hariharan Amsakarunan has advanced to the men's doubles quarterfinals in Jakarta. The Indian duo defeated the Malaysian pair of Aaron Tai and Kang Kai Shing in a hard-fought match today. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to number 1 in the women's 57kg category, while Asian champions Priya Ghangas in 60kgs and Vishwanath Suresh in 50kgs surged into the top 3 of their respective categories. In men's section, Sachin Sehwag and Narinder Berwal broke into the top 5 following a sustained run of international success. The southwest monsoon has arrived in Kerala today. The India Meteorological Department or IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Kerala and Karnataka and heavy rainfall over Tamil Nadu during the next 7 days. Heavy to very heavy rainfall is also likely over Mahe, Puducherry and Karaikal tomorrow. Meanwhile, Delhi NCR today witnessed heavy rainfall, bringing relief from warm and humid conditions. IMD also predicted very light and light rainfall accompanied by thunderstorms and lightning tonight. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked CMs of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top 3. That's all in the news at 9. Good night.

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा, जिसमें आप सुनेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में। वार्ताकार हैं बलबीर सिंह कक्ष।

गांवकारी दादा दीदी सियान सजन माय माता बहिन मन पंचायती राज चो गोट मन सुनन सुनन जे के जाने से जे के माने से जे के धरे से हुन हरीक ने नाचे से हुन हरीक ने गाये से और जे एचो मिट के नी जाने हुन मुंडे हाथ देउन बसु रहे से। मेहारक फेर आजी पंचायती राज भितरे नोआ मुंडरा के ढिल तो काजे अमरले और तुम्ही बले सुन तो काजे तियार आसास होती आम के पंचायती राज ने कितरो हक मिलली एचोले गांव पारा ने कितरो नंगत बाढ़ती हुए से।

भारत जसन गोटुक संविधानिक लोकतंत्र गणराज बनली हुंदिल ने गांव चु जनता चु उन्नति बाढ़ती काजे कितरो नुआ नुआ वार्ड संगे नुआ नुआ कानून बले बनली एचोले रैयत के नुआ नुआ सुविधा बले मेरुक मुरियाली रैयत के नंगत जीवना चु हक हरीक ने रतो हक शांति ने रतो हक गरीब लोग के पूरे आंतो हक पढ़तो हक देश दुनिया के जानतो हक आपलो हल्का चु रानबन पानी भूई चो हक आपलो हल्का ने मेरतो जिनिस मन चो हक असक्त मन का जे हक आपलो पुरखती चीना बाना के बचाउन संगातो हक देहे के नगर संगातो काजे खेल भाटा आंगनबाड़ी स्कूल जीवना के नगत चलातो काजे रोजगार और ये जमाए काम बुता के दखा रखा करतो काजे ग्राम सभा चो हक आरु कितरो हक पंचायती राज ने रैयत के मेरली से

असने रैयत राज ने कोनी गलत काम नी करो, गांव चो धन के एकला नी खाओ, ईमानदार ने काम करो, जमाए काम बुता चो जानकारी गांव चो लोग के रहो, सरकारी लोग गांव चो काम काजे जिम्मे धरुन काम करो, जमाए काम बुता चो खबर जमाए लोग के रहो, कोनी कलडप करे से जाले उनके कार्यवाही हो, इस जमाए के दखुन सरकार आमचो काजे आनली सूचना चो अधिकार अधिनियम 2005। ये अधिकार ने रैयत काई बले काम बुता चो खबर धरुक सके और काम करिया के खबर देव पड़े दे। ये बले होय से सूचना चो अधिकार अधिनियम 2005। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 भीतरे केंद्र सरकार राज्य सरकार चो अधीन ने काम करू जम्मा ऑफिस नहाले केंद्र नहाले राज्य सरकार ले पैसा धरुन काम करतो संस्था मन के शामिल कर लो आसे। ये काम चो दखारा का काजे केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग बन लिसे। ये अधिकार भीतरे केंद्र आरु राज्य शासन चो जमाए ऑफिस मन ने जन सूचना अधिकारी बना लो आसे। असने कोनी खबर दे तो काजे होय नी होय बल्ले उपरे अपील कर तो काजे राज्य सूचना आयोग आरु केंद्रीय सूचना आयोग बन लिसे। इथाने मुख्य सूचना आयुक्त आरु सूचना आयुक्त काम कर सोत। आमी सूचना चो अधिकार अधिनियम बाटले कोनी बले ऑफिस ले काई बले काम बुता चो जानकारी के मांगुक सकूं दखुक सकूं। जानकारी लिखुन दे दे, सीडी ने दे दे और बले कित्र उवाटले आमी धरुक।

आमके कई बानी चो खबर धरतो होले हुनाफिस चो लोक प्राधिकारी अधिकारी सूचना अधिकारी लगे आवेदन करतो राय। आवेदन संगे 10 रुपया नगद मनी आर्डर पोस्टल आर्डर नहाले चालान हुनाफिस चो लोक प्राधिकारी चो नाव ने आवेदन संगे जमा करुक लागू आए। सूचना देव अधिकारी आम के सांगे दे हुन कीत पन्ना चो खबर आम के दे हुन हिसाब ने आम के पाछे अलग ले पैसा पठाउ लागू आए। A4 नाप कागज चो गोटक पन्ना चो 2 रुपया बड़े कागज चो हुनचो कितरो खर्चा होए से हुन हिसाब ने नहाले खबर CD ने धरतो होले हुनचो हिसाब ने आम के पैसा पठाउ लागू आए। आमी खबर के असन नी धरुन दखा तो काजे बले बलुक सकूं दख तो होले पहिल 1 घंटा काजे काई पैसा नी लागे हुंच पाछे हर 15 मिनट चो आम के 5 रुपया पठाउ पड़ुआए। असन आवेदन लगा ले पूरे बीता आम के 30 दिन ने खबर दे नहाले 30 दिन भीतरे खबर धर तो काजे कितरो पैसा जमा करुक लागे दे एके सांगे दे नहाले काय कीर्ता ने खबर नी देउक सके सूचना अधिकार धारा 8 और 9 भीतरे आम के सांगे दे। गरीबी रेखा चो लोग के सूचना अधिकार भीतरे उपरा पैसा नी लागे मंतर एचो काजे आवेदन लगाओ बिता के गरीबी रेखा प्रमाण पत्र काई बले जमा करुक पड़े दे हुनके सूचना अधिकार भीतरे उपरा पैसा देउक नी लागे।

कोनी जनसूचना अधिकारी 30 दिन भीतरे खबर नहीं दिले आमी खबर धरतो काजे अपीली अधिकारी के आवेदन करुक सकू असन करले हुन अधिकारी के होकाने खबर देव पड़े दे नाले हुनके जुर्माना वाले होक सके। आवेदन देव बिता के अपील करतो अधिकार धारा 7 चो उपधारा 1 आरु उपधारा 3 चो खंड कने आसे अपील करले 30 दिन भीतरे अपीली अधिकारी एचो निपटारा करे दे। कोनी मनुक जानून जानून गलत खबर दिले आधा खबर दिले नाले खबर देतो काजे उल्टा सीधा घोठियाले असन लोग के राज्य सूचना आयोग नाले केंद्रीय सूचना आयोग 250 रुपया ले धरुन 25,000 तक जुर्माना वाले धरुक सके असन करुन आमी खबर धरुक सकूं आरु पूरे बिता के खबर देव पड़े दे। ये सूचना अधिकार भीतरे कोनी कोनी खबर के नी देतो नियम बले आसे जसन देश जो अखंडता सुरक्षा वैज्ञानिक रणनीति विदेशी खतरा बीती जानकारी के ऑफिस बिता नी देवत संसद आरु राज्य विधानसभा चो विशेषाधिकार बीती खबर खबर ले तीसर के नुकसान हो तो खबर नाता रिश्ता जीवन रक्षा आपराधिक के गिरफ्तार करतो ने अड़चन व्यक्तिगत सूचना आरु आमचो देश चो रक्षा करु सुरक्षा मंचो खबर के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 ले अलग संगालो आसे। ये हक बले आम के पंचायत राज भित्रे शासन च लोक के जवाबदेह बनाउन काम बुता नंगत करो बलून मिरले से जोन बले असन खबर धरतो मन करसास कहीं जानो खोजसास आप लो हल्का चो काम बुता के नंगत कराओ खोजासास आप लो गांव पारा चो जीवना के उजर बनाओ खोजसास आमचो देश चो लोकतंत्र गणराज्य के बरसक बनाओ खोजा साथ जाले उठावा पेन कागज और मांगा सूचना अधिकार अधिनियम चो हक ने खबर। गांव चो बाढ़ती काजे ये हक के बले तुम्हें गांव चो पंचायत बैठक ने ग्राम सभा बैठक ने सांगा रैयत राज चो हक के जाना माना और धरा तेबे आमचो जीवना ने नंगत उजर होए दे और हरिक ने नाचुन गाउन बलवा।

जमा एके सुनलास नफा धरा आज गांव पारा चुबाड़ती काजे बनली पंचायती राज। जमा एके सुनलास नफा धरा आज गांव पारा चुबाड़ती काजे बनली पंचायती राज। आज चो भाग एथाए थे बाउन धरे से मो चुबाट नुआ भाग संगे फेर होएंदे तुम चो संगे भेटघाट। आज चो भाग के एताए थे बाउन धरे से मो चुबाट नुआ भाग संगे फेर होएंदे तुम चो संगे भेटघाट। सेवा जुहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्राम पंचायत की विकास गाथा, जिसमें आपने सुना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में। वार्ताकार थे बलबीर सिंह कक्ष। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रैनी, जिसमें आप सुनेंगे ध्रुवी लोकगीत। कलाकार हैं महंगू राम और साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रैनी में धुरवी लोकगीत। कलाकार थे महंगू राम और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled Chanan Bhel. Continuing this program, she now presents a composition titled Ekta Hum Bari Kumari.

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कुहके बारी कोयलिया हो रामा.
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: दैट वॉज अ मैथिली कॉम्पोजिशन परफॉर्म्ड बाय सौम्या मिश्रा। शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन विद अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड बाटे हेरी दिन काटी नूर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशिभूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: विद दैट शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन ऑफ मैथिली फोक कॉम्पोजिशंस। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। कॉन्टिन्यूइंग द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली, नाउ वी विल लिसन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी जयपुर ओडिशा।

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़ीए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मानव तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछी जाने नाही। मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखा रे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहली ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओगिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दीचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on the expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agri-wood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasan a global sports identity and open up a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings among and along its own comprehensive ecosystem. He stated that Yogasan sports expand globally, it will create significant new possibilities and career paths for athletes. The Ministry of Women and Child Development has invited women students, scholars, social activists and teachers for its internship program during August-September term. The program is open to women students, scholars, social activists and teachers who are enrolled in or associated with any university, academic or non-academic institution. The Ministry of Women and Child Development informed that women candidates in the age group of 21 to 40 years from non-tier 1 cities and rural areas of India are eligible to apply. It added that applicants are to be submitted online through the internship program portal wcd.intern.nic.in. The Bharatiya Janata Party announced that the party Manipur President Adhikari Mayum Sharda Devi will be party candidate for the upcoming Rajya Sabha election of Manipur. The party announced today that the party's prominent woman leader of Manipur will contest the lone Rajya Sabha seat of Manipur, which voting will be held on 18th June. It may be mentioned that the term of the current Rajya Sabha MP of Manipur, Leshimba Sanaja Uba, who represents the Bharatiya Janata Party, ends on 21st of June. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to world number one in the women's 57 kg category, while Asian Championships Priya Ghangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg. And that's the end of the news.
5: मीडिया।